0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बात पानी से सीखी जा सकती है, छोटी छोटी नदियां शोर मचाती हैं, परंतु महासागर शांत रहता है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जाने और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Solo Sharda.
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: सुनो शारदा।
10: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। चूंकि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो जाहिर सी बात यह है कि हम समुदाय से लोगों को यहां आमंत्रित करते हैं, उनकी बातें हम जन जन तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं या कुछ गाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं या कुछ और, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में मैंने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो कि पेशे से वकील हैं, लेकिन वो अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो किस तरीके से इस माहौल में, यानी कि वकालत को वो बैलेंस रखते हैं और अपने सिंगिंग का जो क्षेत्र है उसमें भी वो लगातार काम करते आ रहे हैं, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, आप गामा टू ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
11: थैंक यू सर। गगन जी, थैंक्स अ लॉट।
10: काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और मैं ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पहले हमारी फोनिक बात हुई और उसके बाद हमें समय नहीं मिल पाया, लेकिन ये सच है कि इंसान जब कोशिश करता है तो वो कोशिशें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती हैं। तो एक बार पुनः आप सबका, आपकी फैमिली भी यहाँ आई हुई है, तो इसलिए मैं सबका यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
11: थैंक यू गगन जी।
10: तो नरेंद्र सर, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका फील्ड है, आप पेशे से लॉयर हैं और सिंगिंग आप बाय प्रोफेशनली गाते हैं या बस शौकिया गाते हैं, या यूं कहें कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को।
11: थैंक यू सर। आई एम सिंगिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7 इन डॉक्टर एम एल शर्मा मॉन्टेसरी स्कूल, सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। मेरे पिता, जो कि स्वर्गीय राज कपूर और स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे, तो वो उस दौरान कैसेट्स लेके आते थे, आन आवारा, जिस देश में गंगा बहती है, उस दौरान उनकी फेवरेट मूवीज रही हैं, देखते आए हैं। उस समय हमारे यहाँ टेप रिकॉर्डर होता था सर
10: जी,
11: तो मैं स्वर्गीय मुकेश जी व रफी साहब के गाने, किशोर दा के गाने सुनकर बड़ा हुआ सर। थोड़ा बड़ा हुआ तो 10th क्लास के दौरान एमएस इंटर कॉलेज सिकंदराबाद में एनसीसी ज्वाइन की। 11th में एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर रहते हुए आई हैव गॉट मेनी अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। अटेंडेड ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन हेल्ड एट सापुतारा गुजरात एंड गॉट बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन इन 1993।
10: जी।
11: एंड ऑल्सो बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी। 94 में ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन में बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग एंड ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन में एंड अवार्डेड बाई कर्नल एस एन थ्रॉट जो उस समय वहाँ ट्रैक मैनेजर थे। इट वॉज नेशनल लेवल का ये
10: कॉम्पिटिशन था
11: सर।
10: तो यू कह सकते हैं कि इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत हुई।
11: यस सर।
10: ये आपको विरासत में मिला है।
11: Yes,
10: क्योंकि
11: sir,
10: आपके
11: yes,
10: फादर भी म्यूजिक का शौक रखा करते थे। yes, उस तरीके से फिर आपको गाने का मौका मिला। जहां पर भी आपको मौका मिला वहां आपने चौका मारा। जी जी,
11: जैसा कि नाम में ही है ऑल इंडिया ट्रैक 1994। आई गॉट एनसीसी सी सर्टिफिकेट एज सीनियर अंडर ऑफिसर इन बी ग्रेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉलेज में हर नेशनल फेस्टिवल पर 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो
10: आप गाते थे।
11: नहीं यस सर, देशभक्ति के गीत। और डिग्री कॉलेज में 95 में जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते वहाँ मेरी परफॉर्मेंस सर जरूर रहती थी।
10: ओके ओके ओके, मतलब ये तो स्कूल कॉलेज की बात रही
11: सर,
10: तो इस तरीके से वहाँ से आपकी शुरुआत रही। उसके बाद फिर
11: संगम में सर मैं फर्स्ट प्राइज जीता 96-97 में। अग्रसेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। उस समय शिक्षा मंत्री थे हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार गौर, वो मुझे प्राइज उन्होंने मुझे दिया था सर।
10: जी जी।
11: और 2001 में नीलम रिकॉर्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से मेरा फर्स्ट एल्बम सर रिलीज हुआ।
10: ओह ग्रेट।
11: ये दिल मांगे मोर।
10: तो
11: जैसा कि टाइटल है ये दिल मांगे मोर,
10: हाँ।
11: उसमें था ये

0: दार, ये उसी गाने
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपकी एक शुरुआत रही है, राइट?
0: ये एल्बम काफी सेल हुआ उस दौरान यूके एंड पाकिस्तान।
1: अच्छा, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब यूट्यूब पे अगर लोग आज भी सर्च करें तो वो डेटा आपका मिल जाएगा।
0: मिल जाएगा।
1: वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद फिर शुरुआत क्या रही?
0: बेदर्द सनम मेरा एक एल्बम आया, काफी वो भी काफी चला था इस दौरान, स्टेज परफॉर्मेंस चलती रही। 2002 में ग्रेटर नोएडा आया, प्राधिकरण सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम स्टार्ट किया सर। 2004 में ग्रेटर नोएडा कार्निवल गायन में आई गॉट फर्स्ट प्राइज सर।
1: ओ ग्रेट।
0: उस समय ब्रजेश कुमार जी मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ थे, जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं। और 2006 में कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली इंटर कॉमेट 2006 के नाम से मिस्टर ब्रायन मलिगन जो तब की नोट स्पीकर थे
1: जी
0: और क्रिएटर हैं मलिगन कॉन्सेप्ट के वर्ल्ड में
1: जी,
0: ही इज अ न्यूजीलैंडर, गाना सुनकर सर वो बहुत खुश हुए, मुझे स्टेज पर बुलाया और गले लगाया, जिसको डॉक्टर्स मिलने में पूरी लाइफ निकल जाती है फिजियोथेरेपी को लेकर के। वो क्रिएटर हैं बिकॉज वो मलिगन कॉन्सेप्ट के, नॉन इन्वेसिव है,
1: मतलब वो एक खुशी का लम्हा था आपके लिए।
0: यस सर, मेरे लिए
1: वो किसी अवार्ड से कम नहीं था,
0: अवार्ड से कम नहीं।
1: तो मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत होती रही।
0: यस सर,
1: आप गायन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते रहे, अवार्ड आपको मिला, लोगों ने उस काम को सराहा। तो उसके बाद की अगर मैं
0: और सर मैं बीच में
1: जी जी
0: कहना चाहूंगा
1: जी,
0: इस हिंदी इंग्लिश पैरोडी सॉन्ग पर बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सर।
1: कौन सा गुनगुनाएंगे आप हमें श्रोताओं के लिए?
0: डेफिनेटली सर, इन कोलैबोरेशन बाय कैपरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल थेरेपी दिल्ली एंड एसपीएसपीजी इंस्टीट्यूट देहरादून ने संयुक्त रूप से सर इसको आयोजित किया था
1: जी।
0: श्रोताओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट, ओनली दे दे ओवर प्रेशर, ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है जो मोलिगन कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है, सिखाता है सब डॉक्टर्स को। ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट, ओनली दे दे ओवर प्रेशर, बट

0: it should be sustained.
1: Kya ba?
0: Ooh, follow the treatment plan. Ooh, back the movement plan.
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है मिस्टर नरेंद्र, आपके साथ हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि आज आपसे आप ही की बात हो रही है, आपकी फील्ड की बात हो रही है। और ये तो एक शुरुआत रही कि जिस तरीके से आपने सिंगिंग के क्षेत्र में कब कदम रखा, कब अपने आप को आप आगे लेकर गए और क्या चल रहा है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे जरूर। यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ही के अंदाज में हम म्यूजिकल ब्रेक की ओर चलें। कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब, वो जो अक्सर आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहते हो?
0: नजर

0: मत कहो।
1: चलिए सर, इस गाने को हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। वाकई बहुत अच्छे गाने का आपने चुनाव किया है और इस गाने में बहुत अच्छा एक संदेश भी छुपा हुआ है। तो यही गाना लिसनर्स हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 एफएम पर। ये गाना आप सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए और उसके बाद झट से फट से जुड़ जाएगा सुनोशादा 90.8 एफएम पर। मैं हूं गगन और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पेशे से सिंगर हैं और जिनका नाम है नरेंद्र कुमार सिंह। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 एफएम।
2: नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो,

किसी ने कहा है मेरे दोस्तों।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक गाना हमारे लिए नजर किया, हमारे लिए गुनगुनाया, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरी आदत है। तो एक बार फिर से नरेंद्र जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ये जो गाने जब आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वाकई दिल को सुकून देते हैं ये गाने। इसमें एक मीनिंग है, कहीं संदेश छुपा हुआ है। तो क्या लगता है कि आज के समय में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं?
1: यस सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे डीप ब्रीथ जैसा फील होता है, प्राणायाम
0: ग्रेट
1: जैसा फील होता है। मेरा पैशन भी है, शौक भी है, प्रोफेशन भी है। तो इस बीच वन इंडिया में गाने का मौका मिला, 2015 की बात है सर। और टाइम टू टाइम बीच में फिर अधिवक्ता दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्सर होली के आयोजनों में मेरा
0: गाने का मौका मिलता रहा।
1: जज वगैरह जो बीच बीच में रहे, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी जो आजकल जस्टिस हाई कोर्ट हैं, एवं डिस्ट्रिक्ट जज श्री अभय कुमार जी,
0: मतलब इस तरीके से आपको मौके मिलते रहे।
1: कोई भी वेलकम पार्टी है, कुछ भी है,
0: ओके ग्रेट ग्रेट,
1: कप्तान साहब, उधर डीआईजी साहब, ये सब
0: मतलब प्रशासन के बीच में आप जाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। घर की अगर मैं बात करूं तो घर में किस तरीके से माहौल रहा, ये आपने हमें बताया फादर के बारे में। कभी सपोर्ट मिला, या कभी ऐसा होता है कि पुराने समय की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का समय अगर हम देखें सर, तो आज तो लोग जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खुद उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप गाने के लिए ट्रेनिंग लीजिए, या एक म्यूजिक का गुरु हो आपके पास होना चाहिए। तो आपको घर से कैसा माहौल मिला, कितना सपोर्ट मिला सिंगिंग के क्षेत्र में, या बस आप सिंगिंग छोड़िए आपके बस की बात नहीं है?
1: हमारे कैसा रहा? ऐसा नहीं था सर। हमारे टाइम में हमारे फादर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, और गाना उनको मतलब गाने के मामले में टू बी फ्रेंक में कहना चाहूंगा, वो बिल्कुल भी
0: सपोर्ट नहीं थे। क्योंकि पुराने समय में होता नहीं था, आज के समय में तो बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स बच्चों को।
1: मेरी मदर हालांकि मुझे सपोर्ट कर दी थी, और इसी दौरान जहां जहां मैं सीखने भी गया तो वहां से मुझे गुरुओं से बहुत प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 10-12 ईयर्स में हारमोनियम पे रियाज किया, 2002-2010 ये सब रियाज हुआ, उससे पहले भी मेरा चल रहा था हारमोनियम वगैरह। और मेरे कई गुरु रहे हैं, नारायण मास्टर जी रहे हैं इधर, फिर और गुरुओं का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बल्कि कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले कि हमारा ऐसा कोई शिष्य भी
0: नरेंद्र
1: इस तरह।
0: क्या कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे बॉलीवुड का रुख करना?

0: करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या कुछ घर की ऐसी परिस्थितियां रही कि जिसकी वजह से आप आगे जाने का मौका आपको नहीं मिला?
1: परिस्थितियां रही, हालांकि जब मैं ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपेडिशन सापुतारा में था तो ब्रिगेडियर साहब मुझे सुन करके बोले, नरेंद्र कहां तुम्हें तो रेडियो में होना चाहिए। उस
0: आज आप रेडियो पर हैं, कह सकते हैं कपिल शर्मा जिस तरीके से पूछते हैं, क्या आपने सोचा था कि गगन के सामने आप बैठे होंगे कभी?
1: नहीं सोचा था।
0: जी
1: कर्नल साहब मिस्टर एस एन थ्रॉट 92 में मुझसे बोले थे, इस दौरान जहां जहां मैं परफॉर्म किया, स्टेज पे मैं रहा हूँ अक्सर, फ्लावर शो ग्रेटर नोएडा, इधर फाउंडेशन डे दिसंबर में होता है, ग्रेटर नोएडा का कार्निवल होता है, उसमें फिर एज ए जज भी रहा हूँ, एज ए बीच भी फिलर भी रहा हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस देता रहा हूँ, तो काफी
0: एप्रिसिएशन
1: मिली।
0: चलिए सर, ये
1: भोजपुरी के मुझे ऑफर थे दो।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिल्म का भी ऑफर था, एल एच खान साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी को लेकर के, वो लिरिक्स उन्होंने लिखे थे, उन्होंने मुझे कई बार दिल्ली जब यहाँ आते थे तो मैं मिलता था अक्सर उनसे, और अपॉर्चुनिटी थी, बट फैमिली का भी थोड़ा मुझे था, अपने आप को स्टैंड भी करना था।
0: यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बातें जो जारी हैं लगातार जारी रहेंगी क्योंकि बातें थोड़ी ज्यादा सी हो चुकी हैं, तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आप ही की पसंद का एक और गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जो आप हमारे लिसनर्स को सुनवाना चाहते हैं, और उसके बाद इस बात को हम कंटिन्यू आगे करेंगे।
1: नील नील अंबर पर चांद जब आए,
0: क्या बात है,

बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं यकीनन इस गाने को गाएंगे, गुनगुनाएंगे, अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी गाते झूमते मतलब अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। और ये फिल्म जो है कलाकार फिल्म है, और नीले नीले अंबर पर वाकई बहुत अच्छे बोल है, किशोर कुमार साहब ने इस गाने को गाया है और इंदीवर साहब का लिरिक्स है, और साथ ही साथ मनोज कुमार के जो बेटे हैं इस फिल्म में वो एक लीड एक्टर में रहे हैं, साथ ही साथ यूं कहें कि श्रीदेवी, और मतलब कंप्लीट एक पैकेज है। बहुत ही खूबसूरत गाना है सर, मेरे दिल के बेहद करीब ये गाना है। बस लिसनर्स इस गाने को गाइए, गुनगुनाइए, सुनिए, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं लेकिन बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और कई एल्बम्स में इन्होंने काम किया है। खुद की एल्बम भी इन्होंने रिलीज की है,
1: ये दिल मांगे मोर,
0: बेदर्द सनम, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कुछ जो लिसनर्स हैं जरूर आपको फाइंड आउट करेंगे यूट्यूब पर देखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें आपसे हो रही थी कि अच्छी जगह आपको मौका भी मिला लेकिन घर की कुछ परिस्थितियों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो इस समय की अगर मैं बात करूं, जो कहीं ना कहीं ख्वाब था वो जो दबा हुआ था उस वक्त, अगर आज आपके सामने मौके आते हैं तो कितना उसको आप कैश कर पाते हैं, कितना आप उसको भुना पाते हैं, या कहीं सोचा है कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, मुंबई की ओर रुख करना चाहिए?
1: अभी मेरा ये कंटिन्यू है म्यूजिक, और मेरा फेसबुक पेज मैं अभी बनाया हुआ हूँ तो उसमें लाइव मैं सैटरडे संडे आता रहा हूँ।
0: ग्रेट।
1: और कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो स्टेज परफॉर्मेंस मिलती हैं मैं उसको उनको करता रहा हूँ
0: जी।
1: और फैमिली के कुछ कारणों की वजह से बीच में मैं गैप हो गया था मेरा इसमें, तो मुझे अपने आप को स्टैंड करना था। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ तो
0: ओके
1: मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सर।
0: वेरी गुड, वेरी गुड सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कितना तालमेल बैठा पाते हैं वकालत करते वक्त, या यूं कहें कि आपका जो पेशा है, आप पेशे से वकील हैं और सिंगिंग के क्षेत्र में भी आप समय देते हैं और आप जैसे खुद कह रहे हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा यकीनन मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये जो तालमेल है बैलेंस कैसे रख पाते हैं साथ ही साथ फैमिली भी?
1: बेसिकली मेरा रहता है सर, जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है, आई एम नॉट ए लॉयर, आई एम नॉट ए क्रिमिनल एंड सिविल एडवोकेट। बेसिकली हमारा डीड्स का काम होता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क होता है, तो उसमें मेरे पास टाइम है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। कई बार हमारे एलओटी भी जब पता उनको चलता है कि मैं सिंगर भी हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखता हूँ, डीलिंग भी मेरा व्यवसाय है थोड़ा बहुत, तो कहते हैं नरेंद्र जी क्या क्या हैं आप,
0: हरफन मौला है, तो, हाँ, शायद ही कोई तो फील्ड आपका बचा हुआ।
1: अच्छा गाते हैं
0: जी,
1: ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि मैं सब ये मैनेज
0: कर लेता हूँ,
1: इसमें 10 to 5 का मेरा कोई कंपलसरी जॉब नहीं है।
0: ओके ग्रेट। फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? फैमिली में मैं बात कर रहा हूँ आपकी वाइफ का, बच्चों को तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, बच्चे बड़े ट्रस के साथ आए हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके असिस्टेंट बने हुए हैं, कोई अनन्या को मैं देख रहा हूँ ये वीडियो बना रही हैं, और ये जो आपके छोटे सुपुत्र हैं इन्होंने अभी आपका टेक्निकल वाला पार्ट हमें यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने असिस्ट किया, तो किस तरीके से माहौल मिलता है, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली?
1: सपोर्ट करते हैं, लाइव में मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, बैकग्राउंड देना, उधर साउंड सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, उधर ट्रैक प्ले करना, ट्रैक सेलेक्ट करना, यूट्यूब से ट्रैक को सेलेक्ट करना, तो जो मुझे गाना होता है जो उस दिन मैं डिसाइड करता हूँ उन सबको वो डाउनलोड करके रखते हैं एंड देन फाइनली मैं उस पर गाता हूँ, तो इन लोगों की काफ़ी सपोर्ट रहती है। एंड वीडियो शूट करना, बीच बीच में वहाँ का एनवायरनमेंट देना उस तरह का लाइव का।
0: ओके तो और मैडम क्या सपोर्ट करती
1: है? मैडम की भी सपोर्ट मुझे रहती है,
0: तभी आप बाहर निकल पाते हैं। जी छोड़ो गाना बजाना है, अब तो उम्र निकल गई मियां आपकी। चलिए मैं बच्चों के बारे में जान लेता हूँ। अनन्या आप मुझे बताइए कैसा लगता है जब आप पापा को सपोर्ट करती हैं या पापा के साथ आप जाती हैं, क्या लगता है कि पापा को और आगे जाना चाहिए या आपको लगता है कि मुझे भी सिंगर बनना है?
2: हाँ जी अंकल, कई बारी होता है कि लाइक पापा एज अ जज होते हैं तो मैं जाती हूँ मोस्टली साथ में, या भाई चला जाता है वीडियो शूट या उनकी हेल्प के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से, लाइक उनकी लाइव परफॉर्मेंस होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है फेसबुक पे, तो भाई हेल्प करता है, मैं वीडियो शूटिंग में कभी कभी हेल्प करती हूँ।
0: ओके
2: हाँ, तो अच्छा लगता है ऑफ कोर्स।
0: अच्छा हाँ। तो क्या कभी दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, मुझे भी चुनाव करना है? अभी स्टडी किस क्लास के स्टूडेंट है?
2: अभी 10th.
0: अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, शारदा यूनिवर्सिटी का मास कॉम का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम जैसा टैलेंट भरा हुआ है. मास कॉम का रेडियो भी है, टीवी भी है. अगर आपको कभी लगता है तो जरूर, मैं तो कहूंगा कि एक बार जरूर यहाँ विजिट करेगा, यहाँ का माहौल देखेगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली कि लोग देख ही रहे हैं, और फैकल्टी से आप मिलिए, लोगों से मिलेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं. तो मैं तो इस बात से यही कहूंगा कि आप जरूर सोचिएगा जरूर, अगर आप पापा के साथ आते जाते, क्योंकि एक नो डाउट कि चकाचौंध की दुनिया है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, फिर लगता है कि नहीं यार इसका एक कोर्स कर ही लिया जाए, तो उसके बाद हम कुछ जरूर करेंगे, खास करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम सुन रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में जेवर की तरफ हमें फिल्म सिटी मिलने जा रही है. आपके छोटे भाई भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूंगा. क्या नाम है आपका?
3: माय नेम इज आर्यन.
0: आर्यन, आर्यन मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है पापा के साथ जब आप जाते हैं, या जबरदस्ती ले जाते हैं आर्यन को? नहीं पापा मेरा मन नहीं है, मेरे को तो क्रिकेट खेलना है. कहाँ ले जाते हैं आप? हा?
3: नहीं अंकल, पापा बहुत अच्छे हैं.
0: बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड.
3: सपोर्ट करने में अच्छा लगता है.
0: आप पापा को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है या पापा का सपोर्ट आपको अच्छा लगता है? दोनों को अच्छा लगता है. मम्मा के बारे में बताइए थोड़ा.
3: मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है पापा को.
0: चलिए वेरी गुड सर, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी. मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. यहाँ पर एक मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, और उसके बाद आखिर में एक छोटा सा संदेश आपसे जरूर लूंगा. तो कौन सा एक गाना है जो आपके और दिल के बेहद करीब है, जो हमारे लिसनर्स को आप सुनाना चाहते
1: हैं? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, और इस दौरान तो क्या कहते हैं टाइम पर कुछ सिलेक्शन.
0: कोई बात नहीं, जो भी. हाँ प्लीज सुनाइए.
1: एक मैं रफी साहब का दो लाइन गुनगुना रहा हूँ.

0: जिंदगी
1: क्या बात,
0: कल हम कहां तुम कहां।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना लिसनर्स, मैं आपके लिए नजर करने जा रहा हूं। आनंद बख्शी साहब के बोल, म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन साहब का म्यूजिक, सिंगर जिस तरीके से सर ने हमें बताया रफी साहब और साथ साथ आर डी बर्मन, और स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो रिश्ते में तो हाँ अमिताभ बच्चन साहब और शान फिल्म ये रही 1980 में आई, और गाने के जो बोल हैं यम्मा यम्मा ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सुनोशादा 90.8 FM पर। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको उस प्रोग्राम को सुनकर मजा आ रहा होगा, तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशादा 90.8 FM।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है। कहते हैं कि ईश्वर से जब आप कुछ मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले यही मांगेगा, जो पहला सुख है वो है निरोगी काया। जब आप हेल्दी रहते हैं तो आप गाना अच्छा गा सकते हैं, दूसरा काम बेहतर कर सकते हैं, किसी काम को खूबसूरत अंजाम तक आप पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में, इनके इस पेशे के बारे में जानना चाहता हूँ, चूँकि रियलिटी शोज बहुत आ रहे हैं, लोग अपने आप को वहाँ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, और ख़ासकर

0: मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों का जो एक यूं कहें कि कंपटीशन है लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हताशा भी है, परेशानियां भी हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता, तो इस करंट सिनेरियो को किस तरीके से आप देखते हैं और इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं?
1: बच्चों को डेफिनेटली आई वुड लाइक कि मैं भेजना चाहूँगा, और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट में, और कंपटीशन होना भी चाहिए, और बच्चे प्रिपेयर करें उस हिसाब से आगे बढ़ें, और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, अपना जो शौक है उसको बनाए रखें एंड कंपटीशन से ना डरें। यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस इफ़ यू आर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है।
0: क्या बात है। सो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं या आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं तो डरने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर करता है। तो फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है नरेंद्र सिंह जी, मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी, लेकिन बस जाते जाते ही कहना चाहता हूँ आपसे बात करके, आपकी फैमिली से बात करके कि जो बच्चे हैं यहाँ आए हुए हैं उनसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अपने मन की बात।
1: मैं यही कहना चाहूंगा, अभी टू लाइंस, बीच में मैं फेसबुक पर अपने वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, मेरा फेसबुक पेज भी है जो कि
0: किस नाम से है वो फेसबुक पेज?
1: नरेंद्र सॉन्ग्स, नरेंद्र सॉन्ग्स के नाम से है। तो सर्च करेंगे तो आपको खुल जाएगा वो। और ये मैं दो लाइन आपको सुना रहा हूँ अभी ऑन फ्रेंडशिप
0: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत।
1: याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दिस इज फॉर यू ऑल फ्रेंड्स।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नरेंद्र। लिसनर्स, इस गाने के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, इजाजत लेता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नरेंद्र कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें, अपने मन की बातें हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई।
1: थैंक्स अ लॉट।
0: सो फाइनली, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8fm@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 एफ।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: आपने को गीत सुना मेरा?
2: सुना है जी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशाता 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:03 हो चुके हैं। 2 तारीख है, हमारे आसपास के खास उसके बारे में जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरुशाता 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हाडी संधू की आवाज।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

ऐसे मौसम में ऐसे खूबसूरत गाने तो बनते हैं। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशाता 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचिए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इंतजार तो हम सब कर रहे हैं मानसून का, और मानसून आ भी चुका है, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन ऐसे मौसम में दिक्कतें परेशानियां भी हमारे साथ आती हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति हो जाती है। जो नाले सदियों से साफ नहीं हुए वो हमारे सामने बाढ़ का रूप अख्तियार करते हुए हमारे सामने आने वाले हैं। तो यानी कि जहां जल भराव की स्थिति हो वहां हमें गड्ढे नजर नहीं आते, ट्रैफिक जाम हो जाता है, दिक्कतें परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि हमें बारिश की दरकार है। बारिश हो, अच्छी हो, तेज हो, धुआंधार हो, बस आप ऑन रोड अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, लापरवाही मत बरतिएगा, और जहां पोल्स में करंट आने की संभावना है उससे दूर रहिएगा, है ना। छोटी छोटी सावधानी को कहते ना, कहते वो क्या कहते हैं, हाँ, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो इस तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। मौसम खुशमिजाज हो चुका है, बहुत खूबसूरत हो सकता है, कह सकते हैं कि आज मौसम बड़ा बेईमान है हमारे यहाँ, आपके यहाँ। तो 01204060205 अर्थात 120-40-60-205 पर आप हमें कॉल कर अपने शहर के, पड़ोसी के, ट्रैफिक के और मौसम के हालचाल बता सकते हैं। लेकिन सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, और बारिश के मौसम में एहतियात बरतना बहुत जरूरी। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कही।
1: शालमली खोलगरे एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: महावारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महावारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: याद रखें, महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
0: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महावारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.
4: ओले ओले ओले। ओ शोनक। हेलो, कौन?
5: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
6: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
5: जल्द मिलते हैं।
4: हेलो हेलो हेलो,
7: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
8: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:20 हो चुके हैं, 2 तारीख है हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेते हैं। खास बात यह कि मुंबई में तेज बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है और मानसून का बड़ी बेसब्री से हम सब इंतजार कर रहे थे, वो बहुत जल्द दिल्ली NCR में यूं समझ लीजिए कि दस्तक दे रहा है और आने वाले समय में दस्तक देने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके आसपास जो नाले हैं वो भरे हुए हैं, वो साफ़ हो जाएं, सरकारी अमला अपना काम करे, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपना काम करें, हम भी अपना काम करें, क्योंकि उस तरीके के जो नाले हैं जो ब्लॉक हो रहे हैं तो वहाँ दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी बात ये कि अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो होल हैं, जो कटर के होल हैं, वो अक्सर खुले रहते हैं, वहाँ पर दुर्घटना घटने के चांसेस होते हैं। जैसे जल भराव की स्थिति होती है, होता क्या है कि हम लोग धीरे धीरे बच के चलने की कोशिश करते हैं और वहीं से जाम की स्थिति होती चली जाती है। तो यकीन मानिए कि आने वाले समय में दिक्कतें परेशानियाँ हमारी कम नहीं होने वाली, बढ़ने वाली हैं। सो प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा। और मौसम का जो मिजाज है, आंधी तूफान का अलर्ट है और विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि मॉनसून के आगमन के साथ तेज आंधी बारिश और अधिकतम तापमान की अगर मैं बात करूं तो 32.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तेज हवाएं दिन के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं

हुमस का जो प्रभाव है वो भी ह्यूमिडिटी आपको परेशान कर सकती है। और आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए 5 जुलाई तक लगातार बादलों की आवाजाही और हल्के से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। स्टूडियो ऑल यू सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
1: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
0: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: नेड़े हो के भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: इस रेडियो स्टेशन के अलावा, सुनने के अलावा वैसे देखा जाए तो कोई किसी की नहीं सुनता। बहुत सारे वायदे हुए, बहुत सारी बातें हुई, कुछ धरातल पर काम हुए, कुछ धरातल पर काम नहीं हुए, सिर्फ कागजों पर काम हुए। प्रदूषण की मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली NCR हर बार हॉटस्पॉट बनता है, गैस का चैम्बर बनता है। अब जाहिर सी बात है कि दिक्कतें परेशानियां हैं, तो इसका समाधान भी ढूंढना चाहिए। उपाय भी हुए होंगे, वर्कशॉप्स भी हुई होंगी, लेकिन आखिर हमने एक दूसरे को दिया क्या? प्रदूषण। और यकीन मानिए, इस प्रदूषण की वजह से मौतें भी हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हम हरियाली की तरफ रुख करते हैं, आने वाले समय में भी ग्रेटर नोएडा या नोएडा में भी वही होगा जो दिल्ली के अंदर हो रहा है। एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मामला गंभीर है, इसको हमें जानना होगा, समझना होगा कि हम दे क्या रहे हैं आने वाली नस्ल को, आने वाली जनरेशन को। 6 साल के आंकड़ों की जांच में यह पाया गया है कि ओजोन प्रदूषण सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं है। ओजोन बढ़ती गर्मी के साथ इसका असर देश के कई हिस्सों में बढ़ रहा है। दिल्ली NCR अपडेट ये बता रही है कि हॉटस्पॉट है, और जो कई सारे शहर हैं, चंडीगढ़ है, जयपुर है, अहमदाबाद है, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहर इसकी चपेट में हैं, इसकी जद में हैं। बढ़ती गर्मी, प्रदूषण वाली जो गैसों की वजह से ओजोन का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अगर हम नहीं सुधरे, नहीं संभले, तो दिक्कतें, परेशानियां बढ़ती जाएंगी। आंकड़े हमें यही बता रहे हैं कि हम सुधरे नहीं है, हमने स्थिति को बेकार किया है। दिल्ली NCR कुछ कोशिश कर रहा है, यानी कि आने वाले समय दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि सर्दियों में जो प्रदूषण से निपटने के लिए स्थायी विंटर एक्शन प्लान, वो क्या है उसके बारे में बताऊंगा जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सोर्स शारदा 90.8 FM। इसलिए कहा जा रहा है कि एक पौधा अपनी माँ के नाम जरूर लगाइए। हाँ, अपनी बीबी की माँ के नाम भी जरूर लगाइएगा, वरना दिक्कतें हो जाएंगी। हाँ, खाना नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी,
1: जी
0: प्लीज कैरी ऑन।
1: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
0: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
1: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
0: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते लगातार मैं आपको अपडेट करता रहता हूं, हमेशा अप टू डेट रखता हूं कि हमारे आसपास क्या खास हो रहा है। सामाजिक बातें यही निकल कर सामने आती हैं कि हम तो चाहते हैं कि बहुत सारी सुख सुविधाएं मिले, जैसे कि मसलन मैं चाहता हूं कि एम्स से मुझे बहुत अच्छी सुविधा मिले, मैं चाहता हूं कि रोड्स मुझे बहुत अच्छी मिले, मैं चाहता हूं कि मुझे शुद्ध हवा मिले, मैं चाहता हूं कि मुझे शुद्ध खान पान मिले, लेकिन जमाना भी दुनिया भी मुझसे आशा रखती है, उम्मीद रखती है कि मैं भी अपना काम ईमानदारी के साथ करूं। यकीन मानिए कि अगर हम थोड़ा थोड़ा कदमों के साथ स्टेप बाय स्टेप जब छोटे छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपना काम ईमानदारी के साथ करते हैं, एक खुशनुमा माहौल बनता चला जाता है। तभी एक इंदौर शहर निकल कर सामने आता है साफ सफाई के मामले में, है ना। जब हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो हम तो यही कहेंगे कि दिल्ली हॉटस्पॉट है, ओजोन की दिक्कतें, मतलब ओजोन की परत है उसमें दिक्कतें हो रही हैं। ओजोन जो अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है कि 6 साल के आंकड़ों की जांच में ये रिजल्ट आया है कि ओजोन प्रदूषण सिर्फ कुछ शहरों तक सीमित नहीं है। ओजोन वाला जो प्रदूषण है, दिल्ली NCR तो भैया टॉप पर रहता है। अब क्या कर रही है दिल्ली सरकार, हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर कुछ करना होगा तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो दिक्कतें यूं हमारे सामने आती रहेंगी। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय में स्थायी विंटर एक्शन प्लान यानी कि परमानेंट विंटर पॉल्यूशन मास्टर प्लान एक सूचना जारी कर दी गई है। 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक ग्रैप और प्रदूषण से जुड़ी पाबंदियां स्वतः यानी कि ऑटोमेटिकली लागू हो जाएंगी, यानी कि 50% वर्क फ्रॉम होम होगा और ऑफिस का समय यानी कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम और पीक आवर प्रदूषण कम करने के लिए दफ्तरों की टाइमिंग अलग अलग रखी जाएगी, कुछ इस तरीके से प्लान हो रहा है। तो इसके बारे में आप अभी से प्लान कर सकते हैं। हाँ, शादी ब्याह फंक्शन वगैरह फिरना कहना के बताया नहीं, है ना, तो थैंक यू बोलो, तुम मुझे थैंक यू बोलो कि मैंने तुम्हें अपडेट कर दिया। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं गगन आपके साथ बहादुर के साथ लाइव सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़।

वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:48 हो चुके हैं। 2 तारीख है, स्कूल खुल चुके हैं, यूनिवर्सिटीज भी खुल चुके हैं, कॉलेजेस भी खुल चुके हैं। एक जो दौर है वो शुरू हो चुका है एडमिशन का, यानी कि भागदौड़ शुरू होती है। 12th के बाद मेरे बच्चे का एडमिशन कहाँ होगा, कौन सा अच्छा कॉलेज रहेगा, कौन सा अच्छा विश्वविद्यालय रहेगा जहाँ अच्छा माहौल मिले। तो मैं तो कहूँगा कि शारदा विश्वविद्यालय आप यहाँ ज़रूर आइए, और जब आप यहाँ आएंगे तो यहीं के होकर रह जाएंगे। यकीन मानिए कि एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको पढ़ने को, देखने को, समझने को मिलेंगे, और कल्चरल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी आपको देखने को मिलेंगी, और इसके अलावा प्लेसमेंट भी ज़बरदस्त होता है। लेकिन 100 बातों की एक बात यही है, अच्छा लगता है तुम भी वो धारावाहिक देखते हो। वो धारावाहिक नहीं है ना, वो न्यूज़ आती हैं। हाँ अच्छा, चलो चलो खैर मुझे की बात पर आओ। देखो पहली बात का जो वजन है वो हल्का हो जाता है अगर तुम ऐसा बोलोगे। हाँ तो पहली बात, ये बात भी मुद्दे की थी, ये भी मुद्दे की बात है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यही कि बस हमें अपनी जो पढ़ाई है, कहीं पर भी आप चले जाइए, कहीं पर भी पढ़ाई एक आधार है, और उसी आधार पर आप अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। शाबाश शाबाश मेरे लाल, क्या बोला है, टोल मोल के बोला है, वेरी गुड। मतलब ऑक्सफोर्ड भी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। एक माहौल एक विश्वविद्यालय आपको क्रिएट कर दे सकता है। एग्जाम तो आपको खुद ही फाइट करना पड़ेगा ना, वाइवा खुद ही फेस करना पड़ेगा ना, सवालों के जवाब खुद ही आपको देने पड़ेंगे। इसलिए नॉलेज को एनहेंस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुनूं शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ।

0: बेटा मुकेश ये अभी 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: बिल्कुल आपने सही सुना, सुनो शारदा 90.8 FM वक्त का इशारा। मैं होता हूँ 9-11। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। भारत और इंग्लैंड का पहला T20 बारिश से घुला, घुला नहीं है वो धुला। अरे मेरी एनक घर जाएगी, दिक्कत हो गई। और अभिषेक ने रचा इतिहास, अभिषेक बच्चन, अभिषेक अभिषेक अभिषेक शर्मा, तो पूरा बोला करो बेटा, ये पत्रकारिता मैं तुम्हें कब से सिखा रहा हूँ। तो उन्होंने T20 में नया छक्कों का रिकॉर्ड बना दिया, महारिकॉर्ड बना दिया, तो उनको लग लग बधाई। और वैभव का कब वैभव डेब्यू होगा इंग्लैंड के खिलाफ, देखना बाकी है।
0: ओले ओले ओले ओले ओले याद आता है तो उबर भी याद आ जाती मुझे। बारिश का मौसम है, अपना ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कल होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए
2: ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
6: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। TRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। TRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
7: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
8: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड। क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। ये एक संक्रामक रोग है जो आनुवांशिक नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब इस रोग की चपेट में आ सकता है। टीबी का 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है। 2 हफ्ते लगातार दवा खाने के बाद बीमारी फैलने का कोई खतरा नहीं रहता। टीबी हाथ मिलाने, शौचालय इस्तेमाल करने, खाना और बर्तन बांटने से नहीं फैलता। आइए टीबी के मरीज से भेदभाव न करें और मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 11 66 66 पर संपर्क करें।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। श्रोताओं, आज का एपिसोड बड़ा ही खास है क्योंकि बात हो रही है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की। ये अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें महिला स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा मिलेगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि सेवा ही संकल्प है, भारत प्रथम प्रेरणा। इसी सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे साथ हैं आपकी जानी पहचानी टीकन भाभी। उनसे हम जानेंगे कि ये अभियान क्यों जरूरी है और इसका सीधा फायदा हमें कैसे मिलेगा। टीकन भाभी, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है। प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है, तो भाभी जी ये बताइए कि ये अभियान क्यों आरंभ किया गया है।
1: सबसे पहले तो धन्यवाद शशि जी, और मैं अपने सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि वो हमारे शो सेहत सही लाभ कई को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो हमारे साथ साझा करते हैं। तो देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जी के स्वास्थ्य, पोषण, तंदुरुस्ती और 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है। ये अभियान बीमारियों की जांच और इलाज को मजबूत करेगा, साथ ही महिलाओं और बच्चों की देखभाल पर भी ध्यान देगा। इसके अलावा ये अभियान मोटापे की रोकथाम, अच्छा पोषण और स्वैच्छिक रक्तदान पर भी जोर देगा और समुदाय को स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।
0: बिल्कुल भाभी, इस अभियान के दौरान देश भर में बहुत सारे स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अब ये बताइए कि इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों को कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?
1: अच्छा, तो शशि जी देखिए, इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों दोनों की सेहत पर खास ध्यान दिया जाएगा। जैसे महिलाओं का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की जाँच होगी। इसके अलावा खून की कमी यानी एनीमिया की भी जांच की जाएगी। शिविर में उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट होगा और जरूरत पड़ने पर दवाइयां और आयरन की गोलियां दी जाएंगी। शिविर में टीबी और सिकल सेल जैसी बीमारियों की भी जांच होगी। ये बीमारियां धीरे धीरे असर दिखाती हैं। शुरू में पता भी नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे शरीर को इतना कमजोर कर देती हैं कि रोजमर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है ताकि बीमारी बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू हो जाए।
0: अच्छा भाभी, एक और बात बताइए, शिविर में गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई खास व्यवस्था रहेगी?
1: हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ वजन, ब्लड प्रेशर, खून की जांच और बच्चे की सेहत की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। साथ ही सही खान पान और जरूरी दवाइयों के बारे में भी बताया जाएगा। इस अभियान के तहत बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा भी रहेगी। छोटे छोटे बच्चों को पोलियो, खसरा, टीबी जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने का सबसे आसान और असरदार तरीका टीकाकरण है। अगर समय पर टीके लगवा दिए जाएं, तो बच्चे जिंदगी भर इन बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का असली मकसद यही है कि घर घर सेहत पहुँचे, हर महिला सुरक्षित रहे और हर बच्चा तंदुरुस्त हो। जब नारी और बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार खुशहाल होगा और समाज और देश दोनों मजबूत बनेंगे।

0: भाभी ये तो एक बड़े अभियान पोषण माह का हिस्सा है। वैसे तो हम हर एपिसोड में अपने श्रोताओं को पोषण माह के बारे में बताते ही रहते हैं, तो भाभी क्यों ना इस एपिसोड में भी उन्हें एक बार फिर याद दिला दें और इसका महत्व समझा दें।
1: जी बिल्कुल, पोषण माह का सबसे खास जोर मोटापा कम करने पर है। आजकल बच्चे हों या बड़े, मीठी और तली भुनी चीजें ज्यादा खाने लगे हैं। चीनी और तेल का ज्यादा इस्तेमाल शरीर को बीमार कर देता है, मोटापा बढ़ता है और कई दिक्कतें खड़ी कर देता है। इसलिए इस पोषण माह में लोगों को समझाया जाएगा कि मीठा और तेल कम खाइए, सब्जी, दाल, हरी पत्तेदार चीजें और फल ज्यादा खाइए, तभी शरीर फिट रहेगा और बीमारियां पास भी नहीं आएंगी।
0: टीकन भाभी, पोषण माह का एक और मकसद मैंने सुना है, बचपन की देखभाल और शिक्षा यानी पोषण भी पढ़ाई भी, इसका मतलब क्या होता है?
1: देखिए, छोटे बच्चों की उम्र सबसे नाजुक होती है। जन्म से लेकर 6-7 साल तक का समय उनकी सेहत के लिए सबसे अहम होता है। अगर इस समय बच्चे को अच्छा खाना और सही देखभाल मिलेगी तो उसका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी तेज चलेगा। पोषण का मतलब है कि बच्चों को समय पर दूध, फल, सब्जी, दाल और अनाज जैसे पौष्टिक खाने मिले। सिर्फ पेट भरने वाला या जंक फूड नहीं, बल्कि ऐसा खाना जो शरीर को ताकत दे। साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चित्र दिखाना, कविताएं सुनाना, इन सब से उनका दिमाग सही दिशा में बढ़ेगा, बोलने की क्षमता विकसित होगी और सोचने समझने की आदत बढ़ेगी। आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक खाना दिया जाता है, जैसे खिचड़ी, दूध, अंडा, दाल, सब्जी, ताकि उनके शरीर को सही पोषण मिले। साथ ही वहाँ बच्चों को खेल खेल में सीखने का मौका भी दिया जाता है। सरकार चाहती है कि आंगनवाड़ी और स्कूल बच्चों के लिए ऐसी जगह बने जहाँ उन्हें सेहत और शिक्षा दोनों का सहारा मिले, ताकि वे न सिर्फ तंदुरुस्त रहें बल्कि होशियार और समझदार भी बने। यही बच्चों के अच्छे भविष्य की असली नींव है।
0: बिल्कुल भाभी, भाभी इस बार पोषण माह में IYCF यानी कि इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग यानी शिशु और छोटे बच्चों की आहार पद्धतियों पर भी जोर दिया जा रहा है। ये क्यों जरूरी है जरा आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, छोटे बच्चों का खाना पीना ही उनके सेहत की नींव रखता है। जन्म से लेकर 2 साल तक का समय बच्चे की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। अगर इस दौरान सही आहार मिलेगा तो बच्चा मजबूत बनेगा और बीमारियों से दूर रहेगा।
0: तो भाभी, सही आहार पद्धति की शुरुआत कैसे होती है?
1: सबसे पहले तो जन्म के 1 घंटे के भीतर बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इस पीले गाढ़े दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये बच्चे की पहली वैक्सीन है जो उसे कई बीमारियों से बचाती है।
0: अच्छा भाभी, फिर 6 महीने तक क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है, न पानी, न शहद, न दाल का पानी। माँ के दूध में पानी, पोषण और सुरक्षा सब कुछ होता है।
0: और 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए?
1: 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को ऊपर का खाना देना शुरू करना चाहिए, जैसे दाल चावल मैश करके, यानी उसको एकदम ही पीस कर बच्चे को खिलाना चाहिए। खिचड़ी, दलिया, सब्जी, फल या अंडा, ये सब भी बच्चे को मैश करके उसके पोषण यानी उसके खाने के साथ देना चाहिए। साथ ही माँ का दूध भी जारी रखना चाहिए, वो बंद नहीं करना चाहिए। हर महीने बच्चे का खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना है, ताकि उसका शरीर मजबूत बने और दिमाग भी तेज चले।
0: यानी भाभी, IYCF का मतलब यही है कि बच्चे को सही समय पर सही आहार मिले।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो पोषण माह का असली संदेश है। अगर शुरुआत अच्छी होगी तो बच्चा ना सिर्फ तंदुरुस्त होगा बल्कि पढ़ाई लिखाई और जिंदगी में भी हमेशा आगे रहेगा।
0: अच्छा भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में पुरुषों की भागीदारी पर भी जोर दिया जा रहा है, आखिर क्यों?
1: देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि जब समाज की बात करते हैं तो उसका निर्माण पुरुष और महिलाएं सब मिलकर करते हैं, तो बच्चों की परवरिश और पोषण सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, अगर पिता भी साथ दे तो माँ का बोझ आधा हो जाता है और बच्चे को दो गुना सहारा मिलता है।
0: तो भाभी आप बात कर रही हैं कि पुरुष भी साथ दें अपनी पत्नी का, तो पुरुष इसमें कैसे मदद कर सकते हैं?
1: बहुत आसान है, बच्चे के टीकाकरण और आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों में पिता भी जाए, घर पर पौष्टिक खाना लाने में ध्यान दे और बच्चों को समय दे, रोज बच्चों के साथ खेलें, उनसे बातें करें, इससे बच्चा भी खुश रहता है और माँ को भी सहारा मिलता है।
0: अच्छा भाभी, इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: हाँ, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे पौष्टिक खाने की चीजें मिलती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और बाजार के महंगे पैकेट वाले सामान पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। असली मकसद है कि लोग अपने गांव में मिलने वाले सस्ते और पौष्टिक अनाज, फल, दाल और हरी सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
0: अच्छा, तो भाभी कौन कौन से खाद्य पदार्थ पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है?
1: देखिए, हमारे यहाँ मिलने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का ताकत और पोषण से भरपूर हैं। इसी तरह मौसमी फल जैसे अमरूद, पपीता, केला, नींबू और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, मेथी, सरसों हो गया, हमारे आसपास आसानी से मिल जाते हैं और बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: तो भाभी बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं पोषण के लिए, तो इससे परिवार को क्या फायदा होगा?
1: देखिए, फायदा बिल्कुल सीधा है, स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों से बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा, बुजुर्गों को ताकत मिलेगी और महिलाओं को खून की कमी जैसी बीमारियों से राहत मिलेगी, ऊपर से गांव की खेती और किसानों को भी बढ़ावा मिलेगा।
0: भाभी इस बार राष्ट्रीय पोषण माह में एकीकृत क्रिया और डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है?
1: जब शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला समूह और पंचायत सब मिलकर काम करेंगे तभी असली बदलाव आएगा। यही है एकीकृत क्रिया, मतलब सब विभाग मिलकर एक ही दिशा में बच्चों और महिलाओं की सेहत सुधारने के लिए काम करें।
0: और डिजिटलीकरण क्या होता है?
1: अरे ये तो उसके नाम में ही दिख रहा है आपको, डिजिटल, यानी आजकल सरकार सेहत के क्षेत्र में मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है। इससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी महिलाएं और बच्चे कुपोषित हैं और उन्हें क्या सुविधा देनी है, इससे काम तेज और पारदर्शी हो जाता है।
0: अच्छा भाभी, इस बार पोषण माह में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की भी चर्चा है, ये योजना क्या है?
1: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। इससे महिलाओं को गर्भावस्था और स्तनपान के समय पोषण व आराम के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें।
0: बिल्कुल, तो भाभी ये बताइए, अगर कोई भी महिला इस मातृ वंदना योजना का लाभ लेना चाहती है तो उनको क्या करना चाहिए?
1: बहुत ही आसान है, इसके लिए सरकार ने विशेष पंजीकरण मुहिम चलाई है। महिलाएं अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर पंजीकरण करा सकती हैं। वहीं पर पूरी जानकारी और मदद भी मिल जाएगी।
0: बिल्कुल, तो टीगन भाभी आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में। तो हमारे जो भी सुनने वाले हैं जरूर इस योजनाओं का लाभ उठाएंगे, खास करके जो हमारी महिला श्रोता हैं वो तो उठाएंगी, और साथ ही जो हमारे पुरुष श्रोता हैं वो जरूर अपनी जो पत्नियां हैं उनका ध्यान रखें और पूरा उनका सपोर्ट करें, सहयोग करें। तो दोस्तों, आज के सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम में हमने जाना कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के जरिए महिलाएं, किशोरियां और बच्चे समय पर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, टीकाकरण और देखभाल ले पाएंगे। साथ ही 8वें राष्ट्रीय पोषण माह में मोटापे की रोकथाम, सही पोषण, जीवन शैली में सुधार और स्वैच्छिक रक्तदान जैसी चीजों पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि हम सब के बीच स्वस्थ आदतें बढ़ें और पूरा समाज फिट रहे। तो चलिए हम अपनी शपथ भी ले लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कही। तो दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। मिलते हैं सेहत सही लाभ कही के अगले एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

हम संयम से जीवन सफल हमारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, स्वास्थ्य संतुलन बना रहेगा ना कोई हल्का भारा हो, सौ में चमके न्यारा।

0: ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
1: हाय, मैं अरुण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। और इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, देश की रक्षा में हमारे सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। गर्मी, बरसात और ठंड के मौसम में खुले आसमान के तले सीमा पर डटे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर जान की बाजी लगा देते हैं। हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व है और इसी कारण हर देश प्रेमी सैनिकों के जज्बे को सलाम करता है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। सैनिकों के हौसले से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और करोड़ों लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और देश प्रगति कर रहा है। हमारे सैनिक सीमा की सुरक्षा के साथ ही देश पर आने वाली आपदा में भी पूरा सहयोग करते हैं। आपदा विशेषकर बाढ़ आने पर हमारे सैनिक जहां भी लगाए जाते हैं वहां लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देते हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर संकट में पड़े हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए जुट जाते हैं। हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और साथ ही किसी भी बाहरी या आंतरिक खतरे से देश की रक्षा करते हैं। सैनिक देश के लिए अपनी जान भी देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। सैनिकों का काम केवल सीमा पर रक्षा करना ही नहीं होता, बल्कि वे आपात स्थितियों में भी नागरिकों की मदद करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और अन्य संकटों के दौरान लोगों को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सैनिक देश के रक्षक हैं और उनकी सेवाओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही देश के सैनिकों के सम्मान की, लेकिन किसान मित्रों यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि एक बार हमारे एक फौजी भाई और हमारे एक किसान भाई की मुलाकात होती है। दोनों में बातचीत होती है। एक तरफ हमारे जो किसान भाई हैं कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मेहनत है वो आपसे ज्यादा है, क्योंकि हम ना बारिश देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बाढ़ देखते हैं, ना सूखा देखते हैं और दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। उधर हमारे फौजी भाई ने कहा कि देखिए किसान भाई, हमारी जो मेहनत है वो आपसे ज्यादा है। हम दिन रात सीमा पर डटे रहते हैं, हम भी ना गर्मी देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना बाढ़ देखते हैं, ना सूखा देखते हैं और ना भूख की परवाह करते हैं, ना प्यास की परवाह करते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं और पता नहीं कहाँ से गोली चल जाए उसका मुकाबला करने के लिए भी हम एकदम तैयार रहते हैं। इस तरह की नोक झोंक हमारे किसान भाई और फौजी भाई में हो जाती है। तो इसी मौके की रागनी किसान मित्रों आज आपको सुनवाते हैं। किस्सा रहेगा जय जवान जय किसान का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना।
1: हम देश के वीर किसान खेत में,
2: सही बात है,
1: हम देश के वीर किसान खेत में, हम दिन रात कमावे से।
2: ओहो, हमारी भी तो बात सुन लो।
3: कहिए
4: ड्यूटी।

हसन भाई, सही है फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई, सब

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी, किस्सा था जय जवान जय किसान का। किसान मित्रों, देश के खाद्यान्न उत्पादकों की वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और आप किसान भाइयों की उत्पादकता में वृद्धि तथा वित्तीय अवस्था सुधारने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमारे किसान भाइयों को बीज और खेती जैसी उपकरण संबंधी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर यह मिशन भारत के किसानों को अच्छी पैदावार उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा होने के प्रयास में कार्यरत है। अब किसान मित्रों, आपको ये भी बता दें कि इस मिशन का आखिर उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, किसान भाइयों के लिए रोजगार के अवसर और अच्छी आय के अवसर देना, भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार करना और आगे बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य को पूरा करना, किसानों की कार्यप्रणाली बेहतर बनाने के लिए पंप सेट, पानी के छिड़काव करने वाले यंत्र और पानी वाले पाइप वितरित करना। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। और आइए अब आपको एक रागनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं रविंदर खालौर और लोकेंद्र, किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का। तो आइए सुनते हैं श्रवण कुमार के किस्से से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे श्रवण कुमार के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे रविंदर खालोर और लोकेंद्र सिंह। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, दुधारू पशु हमारे किसान भाइयों की आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसके कारण पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में अगर हम बात करें तो वो हैं गलाघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी और तिल्ली या बागी रोग शामिल है। अगर इनका संक्रमण दिखे तो तुरंत किसान भाइयों, आपको पशुओं के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसान मित्रों, आपको बता दें कि खुरपका मुंहपका रोग, जिसको संक्षिप्त रूप में FMD कहा जाता है, ये बीमारी गाय भैंस में बड़ी शीघ्रता से फैलती है और ये बीमारी एक प्रकार के विषाणु से उत्पन्न होती है। ये रोग गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों और सूकरों में भी होता है। इस बीमारी में जीभ के नीचे मसूड़ों, थनों और खुरों में छोटे आकार के छाले फपोले पड़ जाते हैं। पशुओं को तेज बुखार होता है और जुगाली करना वो बंद कर देते हैं। दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। पशुओं के मुंह से लार गिरने लगती है। थनों पर छालों से कभी कभी थनेला बीमारी भी हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में ये रोग स्वस्थ पशु के बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से और लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर, थन में पड़े फपोलों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कि बचाव कैसे किया जाए पशुओं का इन बीमारी से। तो बचाव के लिए 3 माह के ऊपर के सभी पशुओं का वर्ष में एक बार टीकाकरण जरूर करवाएं। ये रोग पशुओं को बरसात में अधिक होता है। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार होता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। उपचार के लिए आप अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लीजिए और पशु का उपचार करवाएं। लेकिन साल में 2 बार खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि दुधारू पशुओं की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब किसान भाइयों, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के आखिर में एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का। तो आइए सुनते हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और टीना पटौदी से ये रागनी, खिस्सा था हरिश्चंद्र तारामती का। और अब किसान मित्रों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए, आपसे अनुमति ली जाए। तो इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, दिस इज शालमली खोलगरे एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी रोगी के साथ रहते हों, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

0: क्यों, कैसे परेशान नजर आ रही हो?
1: मैं आज मैं बेहद परेशान हूँ। क्यों? कि मेरी जो ये लड़की है नहीं, बड़ी उर्मिला,
0: अच्छा
1: ये शादी के योग हो गई और मुझे इसकी तमन्ना बहुत ज्यादा है। इसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए।
0: तो तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: हाँ।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या है। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है। तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

मेहरबानो कालिया ने कहा, जब उसे दया दर्द आया, हरिया तने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, उस दुखिया ते कंगाली में तू चीर लेके आ गया, करके बदले उसे माफ कर देता, वो तो तेरा बेटा था।

मेरे दिल में आहे भरती थी, जब मेरी ब्याही मुझे हाथ पकड़ के डांटती थी, महाराज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी ब्याहता हूँ और यह कमर रोहतास तुम्हारा इकलौता पुत्र है, तुम्हें दर्द नहीं आया मेहरबानो? कहने लगा मैंने बज्जर की छाती करके अपनी ब्याही तहसील ले लिया, भला किसे अपने बेटे की मौत पर दुख नहीं होगा? मेहरबानो कहन लगा कालिया तुझे ऐसा नहीं करना था। मेहरबानो रोष में आके फिर कह दिया हरिया ने, अरे कालिया तेरा नाश जागा, मेरी बात सुनने तेरा अगर पेठा भर गया हो चीर लेने से, भला कैसे

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मनोज काय मुलट काय बैठो, का बात होगी?
2: अब कहो बताऊं भैया, दो दो बेर कोविड को टीका लगवायो, हमसे कही यासु जो प्रमाण पत्र मिलागो ना, आगे बड़ा काम आएगो।
1: तो का हुआ, मिलो ना? तो
2: मिलो तो है, पर याय देख देख के अपना माथा ठोक रो हूँ।
1: क्यों, तेरे नाम में कोई गलती है? पिताजी का नाम कुछ और गेर दियो
2: ना? वे दोनों तो ठीक है, फोटो भी ठीक है।
1: तो का बात है
2: भैया, जब मोबाइल दुनिया हाथ में ले घूमो ना, वाकु नंबर ही गलत गेर दियो।
1: ए तो या में इतने परेशान होने का बात है, छोटी सी गलती है, हो जावे कभी कदार इस गलती।
2: तो अभी वो ठीक ना होवे?
1: बिल्कुल होगी। यू मान लो, अगर या के जैसी दूसरी गलती है, जैसे तुमने दूसरा टीका लगवा लिया हो और प्रमाण पत्र में न लिखो गया हो, विदेश यात्रा को प्रमाण पत्र पे पासपोर्ट का विवरण न लिखो गया हो, या कोविन पोर्टल पे लॉगिन करने को कई दूसरे नंबर का उपयोग करो गए हो, ये सारी गलती भी ठीक हो जावे। लेकिन एक बात याद रहे, यू बस एक बार ठीक हो गए।
2: अरे एक बार तो ठीक हो जाए, पर याकु करनी क्या होगी?
1: कुछ ज्यादा ना, बहुत आसान है। कंप्यूटर इंटरनेट की जाए थोड़ी सी भी जानकारी है ना, वो आदमी अपने आप या घर बैठे ही ठीक कर देगा। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजर पे जाके cowin.gov.in टाइप करो। वाके बाद कोविन के होम पेज पे ऊपर दाई ओर कोने में दिए हुए रजिस्टर साइन अप पे क्लिक करो। फिर जहाँ मोबाइल नंबर को उपयोग तुमने टीकाकरण के टाइम पे करो हो, वही नंबर डालो और 6 अंकन को एक ओटीपी आवे, वह वेरीफाई करके तुम्हारी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पे तुम्हारे टीकाकरण की स्थिति दिखाई दे जावे। प्रमाण पत्र में सुधार करने को ऊपर दाई ओर दिए हुए रेज द इशू पे क्लिक कर दो और वह प्रक्रिया पूरा कर लो। बस होगा तुम्हारा काम, चुटकी बजा चाहिए। या के अलावा अगर तुम्हें कोविड के टीकाकरण प्रमाण पत्र में कोई भी त्रुटि है, तो वाकु मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से भी संपर्क साध सको।
2: रही ना बात, इब करूं प्रमाण पत्र में सुधार।
1: यू जानकारी यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की ओर से जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हिंदुस्तान की परंपरा यही रही है कि हिंदुस्तान में नारियों को पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन जब कहीं कहीं कोई घटना घट जाती है जहां नारी का अपमान होता है, तो दिल बहुत दुखित होता है। सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हम लगातार बात करते आ रहे हैं और बातें करते रहेंगे। यूं कहें कि कुछ खास बिंदुओं को हमने उठाया है और उस विषय पर हम बातें करेंगे। जैसे बेटियां हैं तो वंश है, प्रजनन अधिकार, इसके अंतर्गत बातें आती हैं भ्रूण हत्या, लिंगानुपात, बेटे होने पर उत्सव और रिवाज। दूसरा विषय बालिका या वधु, इसके अंतर्गत बात आती है बचपन का हनन, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। तीसरा विषय खतना, धर्म नहीं दर्द, इसके अंतर्गत बातें सामने आती हैं बाल उम्र में शारीरिक दर्द, रिवाज और विश्वास, कानूनी सलाह, पितृ सत्ता, असमान व्यवहार, असमान दिशा, बातें होंगी भेदभाव और समान दर्जा, शिक्षा से वंचित, एक ऐसा विषय है माँ मुझे बाहर जाना है, इसके अंतर्गत बातें आती हैं कि घर और आस पड़ोस के दायरे, घर या घर के बाहर सवालिया सुरक्षा। विषय ये भी है कच्ची उम्र की शिक्षा, यानी बदलती शारीरिक संरचना और किशोरावस्था में अपराधी मानसिकता से बचने हेतु सीखने योग्य बातें, कैसे बचे मनचलों से। बातें होंगी इंटरनेट का जाल, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श, ब्लैकमेल, रिश्तेदारों द्वारा छेड़खानी और चुप्पी, ये बातें होंगी कैसे बचे मनचलों के अंतर्गत। दहेज प्रथा या हत्या, इसके अंतर्गत बात सामने आती है दहेज प्रथा के दुष्परिणाम, सामाजिक हैसियत का दिखावा। अगला विषय मेरी पत्नी मेरा अधिकार, यानी वैवाहिक बलात्कार, शारीरिक हिंसा, मानसिक बलात्कार, ये कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी थीम है जिसके अंतर्गत हम बातें आपके सामने लेकर आएंगे एक रिसर्च के माध्यम से। सुनो शारदा 90.8 FM ने हाथ मिलाया है रेडियो अमेठी के साथ और रेडियो अमेठी ने हाथ मिलाया है हमारे साथ, यानी सुनो शारदा 90.8 FM के साथ एक समझौते के तहत एक दूसरे के कार्यक्रम हम यहां से प्रसारित कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम वो अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो रेडियो एमिटी का धन्यवाद करते हुए आइए सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये खास कार्यक्रम।

0: खास कार्यक्रम हिंसा को नो, जिसका उद्देश्य है घरेलू हिंसा और महिला उत्पीड़न जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। मैं बोल रही हूँ श्रेया और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंसा को नो। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शिखा जी। शिखा जी को तो आप सभी जानते हैं, तो चलिए उनसे बातचीत कर लेते हैं।
1: थैंक यू श्रेया मुझे इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और जैसा कि श्रेया ने कहा, मैं आप सबकी साथी हूँ, आप सब में से एक। आप सबसे हमेशा बातचीत गपशप हमारी चलती रहती है अलग अलग मुद्दों पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंसा को नो, क्योंकि हिंसा कैसी भी हो हमें उसे बर्दाश्त नहीं करना है, आवाज उठाना है और हिंसा को कहना है एक सुर में नो।
0: आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे यौनिक हिंसा के बारे में। तो शिखा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यौनिक हिंसा किसे कहते हैं?
1: श्रेया, हमने पहले भी कुछ एपिसोड्स में काफी तरह जो हिंसा के प्रकार होते हैं उस पे डिस्कस किया है, लोगों को बताया कि आखिर हिंसा कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें से एक है आपका यौनिक हिंसा। तो यौनिक हिंसा बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे लोगों को समझाना, क्योंकि जहाँ भी बात इस तरह की आती है सेक्सुअल असॉल्ट की, या फिर घर में अगर किसी ने आपको सेक्सुअली अब्यूज किया है, तो लोग उससे ना बहुत पीछे हटते हैं, बात नहीं करते, छुपाने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं बात, क्योंकि लोगों को लगता है अरे हमारे घर की बात बाहर ना जाए।

0: लेकिन ये गलत है। कभी भी जिसने गलत किया वो गलत होगा उस चाहे, लेकिन ये गलत है। कभी भी जिसने गलत किया वो गलत होगा, उसको शर्मिंदगी महसूस करानी चाहिए, ना कि जिसके साथ गलत हुआ है। इसीलिए जब भी यौन उत्पीड़न का कोई भी मामला हो, मुझे लगता है कि उस समय तो हमें और तेजी से हल्ला मचाना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: बात आगे बढ़ानी चाहिए। अब जैसे आपने पूछा कि यौन उत्पीड़न या फिर यौनिक हिंसा आखिर होती क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। किसी को लगातार घूरना, मतलब आप किसी को ऐसे देखो, किसी को उस तरह से आप अपनी निगाह घुमाओ कि वो अनकंफर्टेबल फील हो। एक फीमेल को आप जेनिटल एरियाज की तरफ उसके देखना, है ना, लोग कई बार आपको स्टेयर करते रहते हैं, तो वो चीजें बहुत गलत है और वो इसमें आती हैं। दूसरा, छूना या छूने की कोशिश करना, टिप्पणी करना, ऐसी कोई बात फप्ती कसना कि जैसे घर के अगर मान लीजिए कोई बहू है और वो कोई काम कर रही है और कोई ऐसा अगर हमारे घर में कोई ऐसा आदमी है जिसकी नजर नहीं सही है, नियत नहीं सही है, तो होता ना आते जाते कुछ कुछ बोलना, तो वो भी गलत है। यौन आक्रमण या फिर यौनिक क्रियाएं ऐसा करना या लोगों को आभास कराना, वो गलत है और ये सारी चीजें यौन उत्पीड़न में आती हैं। अब अगर हम बात करें कि यौनिक उत्पीड़न के रूप कितने होते हैं, तो बलात्कार या यौन उत्पीड़न या इसकी कोशिश करना, दूसरा, या फिर किसी महिला पे यौन सहमति के लिए अवांछित दबाव डालना, मतलब उसको प्रेशराइज करना कि वो आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, तीसरा आता है अवांछित रूप से जानबूझकर छूना, ऊपर झुकना, चुटकी काटना या फिर धक्का देना, समहाउ अनकंफर्टेबल फील हो। फिर है जैसे मैंने आपको बताया कि किसी को घूरना या इशारे करना, अवांछित कामुक नजरें या इशारा, ना बहुत गंदा लगता है औरतें। अच्छा, जब इस तरह से कोई करते हैं ना, तो आपके पास मान लो आप कैसे बोलोगे कि भाई इसने मुझे, ये मुझे बार बार ऐसे करते हैं, लेकिन आपको बोलना चाहिए क्योंकि तभी आपके घर वाले आप पे विश्वास करेंगे।
1: शिखा जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि महिलाएं अक्सर ऐसा करती हैं कि चुप हो जाती हैं, घबरा जाती हैं, छुपने लगती हैं, उस इंसान को फेस नहीं करती, छुप जाती हैं कि हम उधर नहीं जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे। समझ तो जाती हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं की सेंस बहुत तेज होती है,
1: सेंस बहुत स्ट्रांग होती है,
0: समझ जाते हैं कि कुछ तो गलत है।
1: हाँ जी, लेकिन वही चीज है कि वो उस चीज से बचती हैं, घबराती हैं, लेकिन आवाज
0: लेकिन देखिए वो रास्ता तो नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: कब तक बचोगे, कब तक घबराओगे? और कल को एक, जब शादी के बाद एक महिला होती है, वो बड़े रूप उसके होते हैं, कल को वो अगर दब के छुप के कुंठित होके रहेगी तो आगे क्या एग्जांपल वो देगी अपने बच्चों के लिए? तो उसको देखो, एक फैमिली में एक औरत की बड़ी अहम भूमिका होती है, उसको निडर रहना है, किसी से नहीं डरना, भले ही वो उसका पति हो, भले ही वो उसके ससुर हो, सास हो, जेठ जेठानी, नंद देवर देवरानी, जो गलत है, अगर घर में भी कोई गलत है तो गलत है। और वो आपका कोई साथ दे ना दे, आपको खुद के लिए साथ देना है, आपको अपने साथ खड़े होना है। तो श्रेया, जैसे हम बात कर रहे थे कि यौनिक उत्पीड़न के रूप कितने होते हैं, चार मैंने आपको बताए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जैसे अवांछित पत्र, टेलीफोन कॉल करना या कामुक प्रकृति की सामग्री किसी को दिखाना, मतलब कि किसी को ऐसा पिक्चर्स, अभद्र पिक्चर्स दिखाना, फोर्सफुली आप किसी को मैसेज कर रहे हो, न्यूड फोटोज, ये सब भी, तो वो सब भी इसके अंतर्गत आता है। दिल मिलने के लिए दबाव डालना, अवांछित यौन छेड़छाड़, चुटकुले, टिप्पणियां या प्रश्न करना, कुछ ऐसा जो एक औरत को कंफर्टेबल अगेन न फील कराए। सीटी बजाना, ठीक है, सिस्कारी भरना, ऐसे जो आप इशारे देते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। दूसरे के सामने स्वयं को कामुक ढंग से छूना या रगड़ना, तो ये भी है कि आप इशारे किस तरह से दे रहे हो। व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक देखना, देन घूरना मैंने पहले ही बताया था, चेहरे का हाव भाव अपना बदलना, आंखें मारना, दूर से चूमने के इशारे करना, या फिर ऐसा कुछ भी इशारा जो आप उस औरत को एक सेक्सुअल उसके लिए प्रेरित करे। हाथों या शरीर के संचालन को कामुक इशारे में बदलना, तो ये सारी चीजें अगेन एंड अगेन आती हैं सेक्सुअल असॉल्ट या फिर किसी को सेक्सुअली अब्यूज करने में।
1: शिखा जी, जैसे कि आपने सीटी की बात कही, तो

0: तो एक किस्सा मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। माँ और बेटा दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, माँ खाना बना रही थी। तो हुआ यूं कि बेटे ने अपने मोबाइल में रिंगटोन लगा रखी थी सीटी की, और माँ घबरा गई। वो इसीलिए क्योंकि माँ को लगा कि शायद कोई सीटी बजा रहा है। तो उसने कहा कि बंद करो बंद करो, ये आवाज बंद करो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उसने ऐसा रिएक्ट किया अपने बेटे के सामने। तो बेटे ने बोला कि क्या हुआ मामा, आप ऐसा क्यों बोला आपने, ये तो सिर्फ मोबाइल की रिंगटोन है, आप तो मोबाइल की रिंगटोन से इतना घबरा गए, क्या हो गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ में, उसने बताया। तो फिर उसने बताया, अपने बच्चे के सामने बात रखी कि ऐसा ऐसा हुआ, किसी ने उसको घर में, कोई एक मेहमान आया था घर में और उसने सीटी मारी थी और आँख मारी थी, तो उस वजह से उसको अनकम्फर्टेबल फील हुआ था।
1: लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ये है, अब देखिए श्रेया
0: जी,
1: सीटी की आवाज भी उस औरत के लिए एक दहशत है।
0: बिल्कुल,
1: वो उसको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। लेकिन अगर उसी समय उस सीटी, उस मतलब सीटी बजाना गलत सही हम नहीं अगर कहें, भाई आप अच्छे उसमें एंजॉय कर रहे हो, नेचर में हो, यू नो विसलिंग इज समथिंग, एक एंजॉय करने का भी वो है, लेकिन आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है
0: जी।
1: तो अगर आप किसी महिला को अनकंफर्टेबल हो इशारे करने के लिए कर रहे हो, आप सोचो उस महिला के दिमाग पे कितनी गहरी असर गई है।
0: बिल्कुल,
1: आज उसको वो सीटी की आवाज नहीं बर्दाश्त करना चाहते, उसको नहीं पसंद है। और आज जब बेटे ने पूछा तो उसने अपने अपनी चीजें शेयर की। तो पहली बात, इसमें जब घरेलू हिंसा होती है ना, अगर आपको अपने घर का कोई भी सदस्य ऐसा लग रहा है कि वो परेशानी में है, उसको कोई चीज अनकंफर्टेबल नहीं फील हो रही है, या फिर एकदम से अगर आपको लग रहा है आपकी बहू या घर में जो बेटी है वह शांत हो गई है, जो बहन है उसके बर्ताव में बड़ा परिवर्तन आया है, तो ये सब अलार्म्स है
0: जी।
1: हमें भी घर का सदस्य होने के नाते तुरंत पूछना चाहिए कि क्या सब ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम है। और एक महिला को विश्वास दिलाइए कि कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं, हम आपका परिवार है ना, हम आपके साथ हैं। और उस महिला को ये विश्वास खुद पे रहना होगा कि अगर गलत है हो रहा है कुछ, मैं बोलूंगी, कोई भी हो ना हो, हो अच्छी बात है, नहीं है तो भी मैं बोलूंगी। समझ रही हैं?
0: बिल्कुल।
1: सिर्फ ये सोच के कि अरे मैं अगर बोल दूंगी ये तो मेरे जेठ की बात है और मैंने बता दिया कि जेठ जी ने मुझे छेड़ने की कोशिश की, तब तो भाई सास ससुर और पति भी बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप सही हो साच को आज क्या, लेकिन आप बोलोगे तभी तो होगा ना बात
0: जी।
1: है ना? तो मेरे ख्याल से ये वही, आपने बहुत अच्छा आपने एग्जांपल शेयर किया। तो एक मानसिक रूप से जैसे हमने बात की हिंसा, अब सोचिए वो एक यौनिक हिंसा ने उस औरत पे मानसिक हिंसा का भी काम किया
0: जी।
1: ठीक है, तो वो एक तरह का नहीं, कई तरह का ट्रॉमा फिर एक औरत के ऊपर पड़ता है। और श्रेया वही एग्जैक्टली, अब जब हम बात करें कि यौन उत्पीड़न के परिणाम क्या हो सकते हैं, जब एक महिला डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्सुअली अब्यूज होती है तो वो क्या क्या चीजें उसके साथ होती हैं। एक महिला में कई बार ऐसा देखा गया है कि तनाव संबंधी विकार आ जाते हैं, बहुत समय तक चिंता तनाव या डर बना रहने से सदमे के साथ जो है विकार संबंधी लक्षण आ जाते हैं। और अगर और आगे बढ़े हम तो कई बार इतना हद तक बढ़ जाता है कि खुद को नुकसान भी पहुंचाती हैं कई महिलाएं, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता। वो सोचती है मेरा कोई साथ नहीं देगा इसलिए बोलती नहीं। अरे बोलो तो सही, बोलो तो सही, क्या होगा,
0: बोलोगे तभी तो रास्ते
1: शायद सब खड़े हो जाएंगे, और कोई नहीं खड़ा हुआ तो कोई बात नहीं, आप खुद के लिए खड़े हुई है। ठीक है, फिर हम आगे अगर बढ़ते हैं तो यौन संचारित संक्रमण, फोर्सफुली सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, अगर एक ही घर में इस तरह से आपके साथ हो रहा है ना, मल्टीपल लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो कल को उसके साथ में वो इन्फेक्शन और बहुत सारी चीजें, जेनिटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं,
0: बिल्कुल आती हैं।
1: और नेक्स्ट अगर हम बढ़े डिप्रेशन, अवसाद, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, कि उदासी की भावना, इंसान जो एक हसमुख औरत होती है वो एकदम मुरझा सी जाती है, मान लो
0: बिल्कुल खामोश हो जाती,
1: खामोश हो जाती है। लेकिन क्यों खामोश हुई ये जानना हमारा बहुत बड़ा अधिकार है। और घरेलू हिंसा में अगर आपको लग रहा है कि कोई औरत वही आई थी तो बड़ी खुश रहती थी, अभी देखो कैसी हो गई है, परेशान है, पूछो जरूर, प्लीज पूछिए एक दूसरे से। और मुझे लगता है ना हर मोहल्ले में एक छोटा सा महिला मंडली बना लेनी चाहिए और आपस में एक दूसरे का बातचीत आप शेयर करो। आज घर में अच्छा हुआ तो भी बताओ, बुरा हुआ तो भी बताओ। हमारे एक वो है ना कि घर की बात बाहर न जाए, अरे क्या दिक्कत है भाई,
0: लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे,
1: कोई कुछ नहीं कहेगा, और घर की बात बाहर क्या चली जाएगी। आपको आज किसी ने अगर गलत आपके साथ किया है तो आप बताओगे ना गलत हुआ है मेरे साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: शिखा जी, मैं आपसे

0: ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी महिला के साथ यौनिक हिंसा हो रही है तो वो क्या कर सकती है?
1: श्रेया, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि हम बात तो करें किसी के साथ गलत हो रहा हो तो बोला जाए, बताया जाए, लेकिन आगे क्या किया जाए वो जानना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: तो अगर आप उत्पीड़न का शिकार हैं तो अपने आसपास के लोग, मित्र और या फिर जो जानकार लोग हैं जिन पे आप विश्वास करते हैं, उनकी मदद जरूर लें। जैसा मैंने बताया, चुप्पी तोड़े, हम हिंसा को नो में बार बार कहते हैं चुप्पी तोड़ो, आवाज उठाओ, और ये आपको ही करना पड़ेगा। जब आप करोगे तब दूसरे खड़े होंगे। तो लेट अदर्स नो कि कुछ तो गलत हो रहा है आपके साथ। दूसरा, अगर उत्पीड़न आपके घर में हो रहा है और आपके घर के ही किसी, बहुत आपको लग रहा है कि भाई कोई बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जेठ देवर, या फिर कोई आपके यहाँ जो एक गेस्ट आते हैं, या फिर फ्रेंड्स हैं, आपके पति के दोस्त भी हो सकते हैं
0: जी,
1: तो ये कोई भी इनमें से हो सकता है, तो सबसे पहले तो आप कीप इन्फॉर्म्ड। अगेन, आप अपने मम्मी पापा को, ठीक है, अपने भाई बहन को, अपने बच्चों को भी बताओ, सतर्क करो कि भाई जो अगर वो आदमी आपको छेड़ सकता है तो अगर आपकी बेटी को भी छेड़ सकता
0: है। बिल्कुल
1: ठीक। और आज को बेटी क्यों, लड़कों के साथ भी हिंसा हो रही है, सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, तो मुझे लगता है कि बताना जरूर चाहिए। और अगर घर में और इस चीज का नहीं आपको कोई सोल्यूशन दिख रहा है तो कानून की मदद लीजिए, उसमें कोई खराबी नहीं है, और सबक सिखाइए ताकि ऐसा इंसान जो आपके साथ कर रहा है किसी और के साथ करने से डरे और आगे ऐसा न करे। तो श्रेया, मुझे लगता है जब बात कानून की है तो कानूनी सलाहकार को ही ले आना बहुत जरूरी है
0: जी। तो चलिए अब हम बुलाते हैं सुमित्रा जी को। सुमित्रा जी हमें बताएंगी कानून के बारे में।
2: नमस्कार, मेरा नाम है सुमित्रा और मैं अमेठी लॉ स्कूल नोएडा के लीगल अवेयरनेस और लिटरेसी कमेटी की को कन्वीनर हूँ। जैसा कि प्रश्न पूछा गया है, What are the provisions under the IPC, that is the Indian Penal Code of 1860, relating to the crimes against women, especially related to sexual harassment? तो यूं तो मैं बात majority रूप से मैं section 54A की ही करूँगी, लेकिन तब भी आपको बताना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के टाइम में भी और जनरली भी ऐसा नहीं है कि किसी महिला का, किसी पीड़िता का रेप बाहर ही हुआ हो, घर पर भी ऐसे सुनने को आता है। बहुत सारे केसेस हम लोग को भी मिलते हैं हमारे लीगल अवेयरनेस और लिटरेसी कमेटी में, जहां पर कि द वुमन हैज बीन फेसिंग सेक्सुअल असॉल्ट एट होम एंड आल्सो इंसिडेंसेस ऑफ रेप, सो दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 375, 376, 376A, 376B, 376C, 376D एंड 376E। यही पर असॉल्ट ऑन द वुमन तब भी होता है अंडर सेक्शन 354B, जब कोई व्यक्ति किसी महिला को डिसरोब करने की कोशिश करता है, दैट इज ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस, दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड विल बी ट्राइड अंडर द IPC। चलिए आज मैं आपसे बात करती हूँ सेक्शन 354A के बारे में। घर पर रहकर ही अगर किसी महिला पर सेक्शुअल हैरेसमेंट हो रहा है, किस तरीके का सेक्शुअल एक्ट हो सकता है, तो कोई भी व्यक्ति, घर में रह रहा व्यक्ति वो किसी भी रिश्ते में हो, या कोई व्यक्ति उस महिला के घर आता जाता हो, वो किसी भी रिलेशनशिप में हो, इट कैन बी अ डिस्टेंट रिलेशनशिप, तो अगर किसी भी तरीके से अनवेलकमिंग सेक्सुअल ओवरटोन्स हो किसी की बातों में, एक्सप्लिसिटली सेक्सुअल ओवरटोन्स बोलकर हो या एक्सप्रेशंस के साथ हो, कोई व्यक्ति सेक्सुअल फेवर डिमांड करता हो, या फिर घर पे ही किसी महिला, किसी पीड़िता को पोर्नोग्राफिक पिक्चर शो कर रहा हो अगेंस्ट हर विल, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स कर रहा हो, या फिर इन सारी चीजों के बियॉन्ड भी ऐसे कुछ सेक्सुअल कमेंट्स कर रहा हो या फेवर्स के बारे में डिमांड कर रहा हो, तो ये सारी चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आती हैं। तो यहां बताना चाहूंगी, इफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट इज ऑफ द नेचर ऑफ द अनवेलकमिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट और एडवांसेस और अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स और शोइंग पोर्नोग्राफी, इसकी सजा तय की गई है 3 साल या फाइन भी, या दोनों एक साथ ही। इसके अलावा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द नेचर ऑफ मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क पर 1 साल की सजा हो सकती है या फाइन, या दोनों ही हो सकते हैं। बताना चाहूंगी कि दोनों ही ये ऑफेंसेस अवेलेबल हैं एंड दैट इज ट्राइबल बाय एनी मैजिस्ट्रेट, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। बताना यह चाहती हूँ कि किसी भी तरह की, इस तरह की कोई भी हिंसा हो तो आप डरे नहीं, आप आवाज आवाज उठाएं और कुछ नहीं कर सकते तो आप 100 नंबर डायल कीजिए। 100 नंबर तो आपको अपने क्विक डायलर पे रखना चाहिए। और लीगल अवेयरनेस एंड लिटरेसी कमेटी अमेठी लॉ स्कूल नोएडा के नंबर पे आप डायल करें 0120-439-2807। आई रिपीट, अमेठी लॉ स्कूल नोएडा के लीगल अवेयरनेस और लिटरेसी कमेटी के नंबर पे डायल करें 0120-439-2807। और बिल्कुल डरे नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप

0: बात भी साझा करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।
1: कहो हिंसा को।
2: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट संस्था मिलकर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। जिस विषय पर आज बात हुई, ऐसे तमाम विषय समय दर समय हम उठाते रहेंगे और आपके बीच लाते रहेंगे। इन खास जानकारियों को सुनना न भूलें। साथ ही साथ हम धन्यवाद कहना चाहेंगे रेडियो अमेठी का, जिसने हमें ये सहयोग दिया। और ये सहयोग हम भी ऐसे ही दूसरे स्टेशनों को समय दर समय दे रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे खास कार्यक्रम अपने स्टेशन से प्रसारित कर रहे हैं। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी, 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहें ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए,
निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए। तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: बिना ना छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं, कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here।

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अभी कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बच्चे को जिला में स्थित बीमार नवजात शिशुओं के लिए अलग से बने अस्पताल जिसको कि SNCO बोलते हैं, वहाँ लेके चल सकते हैं। वहाँ के डॉक्टर साहब और नर्स बहन जी बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं। शहर के बड़े अस्पतालों जैसी सब मशीनें इस अस्पताल में हैं। अगर बच्चे की कोई जांच करानी हो तो अस्पताल द्वारा खुद ही करा ली जाती है। नवजात को लेकर इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इन जांचों और दवाइयों पर परिवार को कोई भी खर्च भी नहीं करना पड़ता। इसके साथ बीमार शिशुओं को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए सरकार ने निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा दी हुई है। तो सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
0: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCU में ही दिखाऊंगा।
3: तो आपको क्या समझ में आया, फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCU में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: संबंध सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं अजीत
2: और मैं विमलेश। नमस्कार।
0: तो आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं एक सुविचार से, हमेशा की तरह।
2: जी,
0: आज का सुविचार भेजा है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने,
2: और वो लिखते हैं, मदद करने के लिए किसी धन की आवश्यकता से कहीं अधिक अच्छे मन की आवश्यकता होती है।
0: जी हाँ, धन से कहीं अधिक मन की आवश्यकता होती है।
2: जी,
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंदूलाल जी।
2: आइए अब सुनते हैं पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
0: चंडीगढ़ से चांद सिंह दहिया,
2: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
0: पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू, मोहल्ला शेख पेन खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा,
2: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
0: श्रोताओं, और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, सार्गासो समुद्र किस महासागर में स्थित है और इसे सार्गासो क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सार्गासो समुद्र किस महासागर में स्थित है और इसे सार्गासो क्यों कहते हैं?
0: और आप हमें उत्तर भेज सकते हैं हमारे और आपके भी चिर परिचित नंबर 8800440559 पर।
2: और हाँ, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: इस ईमेल पर भी आप हमें लिख सकते हैं और सुविचार भी भेज सकते हैं।
2: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के कार्यक्रम की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम
2: भूल चूक लेनी देनी। श्रोताओं, ये एक बेहद खूबसूरत कार्यक्रम है जो आपके मन को निश्चित रूप से छू लेगा। तो सुनते हैं कार्यक्रम
0: भूल चूक लेनी देनी।
3: बहुत पुरानी बात है, एक गांव में रहते थे सेठ रामेश्वर। उम्र ढल रही थी, पत्नी बेटा बहू सब गुजर चुके थे। जीने का एक ही सहारा बचा था, वो था उनका पोता हरि नारायण, जिसे प्यार से वो हरिया पुकारते थे।
4: बाबा बाबा पकड़ो पकड़ो।
5: अरे, अरे हरिया बेटा, रुक तो, कहाँ भागा जा रहा है?
4: तो फिर मेरे लिए घोड़ा बनो ना।
5: घोड़ा?
4: हाँ घोड़ा, आज महाराज हरिया घोड़े की सवारी करेंगे।
5: अच्छा अच्छा अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है। बैठ जा। लेकिन तेरा बाबा बूढ़ा हो गया है, थक जाता है।
4: कोई बात नहीं, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक टिक टिक टिक। बाबा घोड़ा बन गया, बाबा घोड़ा बन गया।
5: हाँ भाई, घोड़ा बन गया अपने हरिया बेटे के लिए।
3: हरिया इतना चंचल कि बस सवाल पर सवाल पूछता रहता, और सेठ लाख काम में व्यस्त हो पर पोते के हर सवाल का जवाब जरूर देते।
6: राम राम सेठ जी।
5: राम राम, राम राम विशेषण। आओ बैठो।
6: जी जी मालिक। मालिक, मेरा कितना पैसा बकाया है?
5: अरे इतनी चिंता काहे को करते हो, अगली फसल में चुका देना, आधे तो दे ही चुके हो भाई। ननकू।
7: जी मालिक।
5: भाई जरा देखना विशेषर का कितना उधार बाकी है।
7: जी मालिक।
4: बाबा बाबा।
5: हाँ बेटा। देखना ननकू।
7: जी मालिक।
5: किसी को पैसा चुकाने में परेशानी ना हो। हाँ बेटा।
4: बाबा, बाबा।
5: बोल बेटा बोल। अरे बोल बेटा।
4: बाबा, रामू कहता है कि कौवा नहाता नहीं है इसलिए काला होता है, क्या ये सच है?
5: अरे नहीं बेटा नहीं, सब पशु पक्षी अलग अलग रंग के होते हैं, कौवा काले रंग का होता है बस।
4: अच्छा।
8: मालिक, विशेषर ने पिछले महीने।
4: बाबा बाबा।
5: ठहर ननकू।
7: जी,
5: पहले मैं हरिया से बात कर लूं।
7: जी मालिक।
5: बोलो बेटा बोलो।
4: बाबा।
5: हाँ बेटा।
4: गाय माँ माँ क्यों बोलती है और बकरी मैं ऐसे क्यों बोलती है?
8: हमारा हरिया,
5: अब मैं क्या बताऊं बेटा?
8: बहुत
3: सुबह से रात हो जाती, लेकिन हरिया के सवाल कभी खत्म ना होते।
4: बाबा उठो ना बाबा, बाबा।
5: बेटा आजा, सो जा अब, आजा, आजा।
4: नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही है।
5: हे बेटा, तेरे बाबा को तो नींद आ रही है ना, सो जा मुन्ना।
4: नहीं, ओ बाबा, बताओ ना, वो क्या है आसमान में?
5: वो चंदा है, चंदा मामा। देख कैसे बार बार बादल में छुप रहे हैं चंदा मामा।
4: अच्छा पापा, वो क्या है छोटा सा? उठो ना बाबा, बोलो ना, वो क्या है ये छोटा सा चंदा मामा है?
5: अरे नहीं बेटा, ये तो जुगनू है।
4: अच्छा जुगनू?
5: हाँ। अच्छा अब मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ चंदा मामा की।
4: और जुगनू की भी?
5: हाँ हाँ भाई, जुगनू की भी। सुने भी ना तू सोएगा थोड़े ही।
4: सुनाओ ना जुगनू की कहानी।
5: हाँ सुनाता हूँ। देख एक बार ऐसा हुआ,
3: तभी थोड़ी देर में बादल घिर आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है।
4: पापा पापा,
5: क्या हुआ बेटा?
4: देखो ये आसमान में क्या है, मुझे बहुत डर लग रहा है।
5: अरे ये तो बिजली है। बिजली ये बादलों के टकराने से पैदा होती है और फिर बारिश होती है।
4: लेकिन मुझे इससे बहुत डर लगता है।
5: नहीं बेटा, डरने की कोई बात ही नहीं है। देख मैं हूँ ना तेरे पास, तू सो जा, सो जा भी, सो जा मेरा राजा बेटा, सो जा। देख सो जा, अरे मैं हूँ ना तेरे पास, सो जा, सो जा, शाबाश। देख मैं जाग रहा हूँ ना, अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मेरा बहादुर बच्चा, सो जा। सो जा मेरे बेटा, सो।
3: सेठ सेठ तो कभी कभार ही होते, कभी होते लोरी गाने वाली माँ, तो कभी सुरक्षा देने वाले पिता, कभी कथाकार, तो कभी घोड़ा भी। पर वो कभी हरिया पर ना झुंझलाते, ना कभी उसके कामों से थकते। लेकिन बुढ़ापा बढ़ रहा था और साथ ही खांसी भी।
4: बाबा।
5: बोल बेटा।
4: आज मैं स्कूल खाने के लिए क्या ले जाऊंगा?
5: अरे वही जो हमारे बेटे को बहुत पसंद है, गाजर का हलवा और
4: पूरी। वाह, गाजर का हलवा और पूरी।
5: ला, अब अपना बस्ता मुझे दे दे।
4: लो।
5: चल
7: जल्दी जल्दी चल। आप तो इतना हाफ रहे हैं मालिक, कैसे जाएंगे हरिया को छोड़ने? मैं छोड़ देता हूँ।
5: अरे वो तो बस जरा यूं ही खांसी आ गई थी और कुछ नहीं।
7: जरा सी? आप
4: चलो बाबा, चलो ना।
7: क्यों नहीं किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते मालिक?
5: डॉक्टर को दिखाने का समय निकाल लूंगा जरूर
7: मालिक, कैसे?
5: पर अभी तो मुझे हरिया को ले जाने दे।
4: बाबा चलो ना बाबा। बाबा
5: देख जरा दुकान का ख्याल रखना।
7: आप यहाँ की चिंता मत कीजिए।
5: चल बेटा चल बेटा।
4: बाबा बाबा वो क्या है?
5: अच्छा वो बेटा।
4: बाबा वो क्या है?
5: वो मैं
4: बताओ।
7: मालिक मालिक आप अभी यहीं तक। मैं आपको तो खांसी भी बहुत आ रही है।
4: बताओ ना बताओ ना बाबा। वो क्या
5: मेंढक, है मेंढक बेटा
4: मेंढक।
7: मालिक आप तनिक मेरी सुनिए। आप घर चलिए। हरिया को मैं छोड़ दूंगा। नहीं आज मैं आपको नहीं जाने दूंगा। चलिए लाइए बच्चा मुझे।
9: खांसते खांसते सांस फूल गई। दम निकलने को हो गया मगर हरिया की बात का जवाब जरूर दिया। वाह हरे अपनापन वाह ये रिश्ता। पोते हरिया पर सब कुछ बलिदान कर दिया। सेठ जी हरिया के कामों में सुबह से शाम करते थे। डॉक्टर को दिखाने का समय ही ना निकाल पाए। इसी तरह हरिया का बचपन बीत गया। सेठ का शरीर जीवन की इस सांझ बेला में आराम करना चाहता था और हरिया ने युवा अवस्था में कदम रखा। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसने अपने बाबा की दुकान में काम शुरू कर दिया था। सेठ अब और भी बूढ़े हो चले थे।

0: अरे ननकू
1: आया मालिक।
0: ये मेरे कपड़े सूखने के लिए धूप में डाल दे।
2: लाइए मालिक, मैं हूं ना। अब तो हरिया भी बड़ा हो गया है, फिर भी आप काम क्यों करते हैं? मुझे कहिए, मैं किस लिए हूँ?
0: ननकू, वो तो जरा हरिया का हाल तो ऐसा है, तुझे पता ही है, दुकान का संभालना, ब्याज का लेखा जोखा रखना।
2: जी मालिक।
0: सांस लेने की भी बेला नहीं है उसके पास।
2: जी मालिक।
0: और तू भी तो बूढ़ा हो गया है।
2: वो तो सब ठीक है मालिक, पर अब उम्र हो गई है आपकी भी, अब आराम करना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है।
0: कहता तो तू ठीक है भाई, पर हरिया भी काम में इतना उलझा है।
3: एक बार हरिया दुकान के हिसाब किताब का लेखा जोखा देख रहा था।
4: राम सुधन को 3 महीने का ब्याज देना है 100 रुपए हर महीने के हिसाब से, तो हुए पूरे 300। और मंताराम ने 50 रुपए का सौदा लिया, 25 उसमें से दे गया, बाकी बचे 25 रुपए। इन 25 रुपयों पे
0: हरिया,
4: हे भगवान, ये बाबा की आवाज भी ना, एक तो लोगों ने खांस खांस कर परेशान किया हुआ, अब बुजुर्ग है, कुछ कह भी तो नहीं सकते, फिर से हिसाब करना होगा। राम सुधन के 300 और मंताराम के 50 में से आए 25।
0: बेटा, मेरी ऐनक नहीं मिल रही बेटा, जरा देख।
5: बाबा, क्या ये सुबह शाम हरिया हरिया लगा रखा आपने? अरे छोटा मोटा काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता, मैं हिसाब कर रहा हूँ, जरा सा ध्यान इधर से उधर हुआ नहीं कि सारा हिसाब बिगड़ जाएगा, इतना तो खुद भी सोचना चाहिए आपको। बस जब देखो हरिया हरिया हरिया,
4: इसे शुरू करना पड़ेगा हिसाब, 100 रुपए महीने के हिसाब से हुए 300 और 50 में से 25 आए।
0: ठीक है बेटा।
5: अच्छा ठीक है, आता हूं 2 मिनट में, रुक तो जाओ।
4: 25 हिसाब ही करने देते।

0: अब तो सेठ को सुबह शाम अपने पोते से ऐसी ही बातें सुनने को मिलती थी। वो कहते हैं ना, बच्चा और बूढ़ा बराबर होता है। हरिया के प्रति प्रेम में डूबे बूढ़े सेठ का मन प्रश्नों से घिरा रहता।
1: कौन? अरे कौन है भाई? अरे कौन है वहाँ?
2: मैं हूँ, मैं।
1: अरे मैंने पूछा कौन है, कौन है दरवाजे पर?
2: एक बार में सुनाई नहीं देता आपको? मैं हूँ, मैं कितनी बार बोलूँ, मैं हूँ हरिया हरिया। बाबा सोते सोते भगवान की माला जपो, ये दूसरी तीसरी बात से भला क्यों वास्ता रखते हो?
3: हरिया बेटा वो
2: अब ननकू काका आप क्यों बीच में बोल रहे हैं?
3: वो
2: है? मैं बाबा से बात कर रहा हूँ ना, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं?
1: मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया।
2: रहने दो, रहने दो बाबा। लगता है आपके सवालों के जवाब देते देते जब तक मेरा गला खराब नहीं हो जाएगा ना, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा।
1: हरिया बेटा,
3: हरिया बेटा, जब तू छोटा था ना, उदकते मेंढक की ओर देखकर तूने पूछा था, बाबा ये क्या है? मेंढक की रट लगाते लगाते मालिक की जबान अटक गई, खांसी का दौरा पड़ गया, मरते मरते बचे, लेकिन लेकिन तुझे बताया, ये मेंढक है, ये मेंढक है, ये मेंढक है।
1: क्यों रोता है रे पगले? बच्चा है, नादान है।
2: क्या बात करते, क्या मैं मेंढक भी नहीं समझ सकता था? बस बस, अब झूठे उलाने देने के अलावा आप लोगों के पास और दूसरा काम है ही क्या?
3: क्या?
2: ठीक है, जा रहा हूं मैं, बहुत से काम करने हैं मुझे, लेकिन इस तरह की बातें मेरे साथ में मत किया करो, समझे?
1: मेहरबानी करके आज बूढ़े बाबा की बात सुने बिना जाना नहीं बेटा।
2: कहिए क्या बात है?
1: मेरी एक बात हमेशा याद रखना, व्यापार का खास गुर है भूल चूक लेनी देनी। अभी तो तुझ पर मेरा बहुत उधार बाकी है रे।
2: उधार? मैंने कब आपसे उधार लिया?
3: लेकिन फिर भी मैंने कुछ भूल चूक की हो तो बताइए।
1: भूल चूक तो सब मेरी ही है, मेरा तो आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम खूब फलो फूलो, तुम्हारा प्यारा सा घर परिवार हो, तुम्हारे घर बाल गोपाल खिले, तुम्हारी खूब सेवा करे। बचपन में घोड़ा बन तुम्हारी पीठ पर बैठे, और तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हें सराखों पर बैठाए, जरूर बैठाए।
2: बाबा बाबा बाबा, मुझे समझ में आ रहा है आप कहना क्या चाहते हैं। बाबा बाबा चुप क्यों हो गए? बाबा बाबा बाबा क्या
3: मालिक?
2: बाबा ये क्या हो गया तुम्हें? आप तो मेरी एक आवाज पर दौड़कर चले आते थे। बाबा उठिए, बाबा उठ क्यों नहीं रहे?
3: मालिक
2: मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? बाबा उठो ना बाबा। ननकू काका, ननकू काका, डॉक्टर जल्दी जल्दी से जाइए, डॉक्टर बने जाइए।
3: घबराओ मत, मैं यू गया और यू आया।
2: अरे जाओ ना जल्दी, जाओ। बाबा बाबा
3: बाबा
2: बाबा उठिए ना, पानी पानी पानी का छींटा मार। बाबा बाबा उठिए,
3: सांस सांस तो चल रही है।
2: बाबा बाबा उठिए ना, बाबा उठिए,
4: डॉक्टर साहब आ गए।
1: चलिए चलिए, भीड़ हटाई। हाँ हाँ, चलिए साहब, हम आने दीजिए। अरे अरे,
2: डॉक्टर साहब आइए, देखिए ने
1: ये तो बेहोश हो गए। हाँ, नब्ज तो ठीक चल रही है। आप जल्दी से ये इंजेक्शन ले आइए।
2: बाबा मैं बस अभी गया और अभी आया।
4: मेरा इंतजार करना बाबा, मेरा इंतजार करना।
2: डॉक्टर साहब मैं अभी इंजेक्शन लेके आया।
1: आप इनके फौरन पैर सीधे कीजिए।
5: जी डॉक्टर साहब
1: जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक, ऐसे आप थोड़ी हवा आने दीजिए। नब्ज एकदम ठीक है
5: जी,
1: बुखार भी नहीं है
5: जी। डॉक्टर साहब,
2: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब इंजेक्शन जल्दी से लगाइए।
1: जी लाइए।
2: बाबा बाबा
1: देखिए, ये दवा दिन में 3 बार देते रहिए, 5 दिन तक सब ठीक हो जाएगा। बस अब इन्हें आराम की जरूरत है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ
5: जी। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए
2: बाबा, बाबा वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं दिन रात आपके पास रहूंगा, जी जान लगा दूंगा आपकी सेवा करने में, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा आपको। बाबा वापस आओ ना बाबा, एक बार तो डांटो बाबा, इतनी बड़ी भूल कहां चूक गया मैं, कहां चूक गया। बोलो ना बाबा, बोलो ना।
1: हरिया
2: बाबा, बाबा
1: अरे क्या हुआ, क्यों रो रहा है?
2: मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ कर दो, मैंने भूल चुक देनी देनी बाबा, आपने आपने ठीक कहा था, सब माफ कर दिया ना आपने बाबा।
1: मेरा छोटा सा हरिया लौट आया अपने बाबा के पास।
2: बाबा मैंने बहुत बड़ी गलती की है,
1: कोई बात
2: अब ये गलती नहीं करूंगा बाबा,
1: कोई बात नहीं,

0: भूल चूक लेने देनी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन तथा अकादमिक समन्वय डॉक्टर कामिनी भटनागर, रेडियो रूपांतर ज्योति, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, विद्या भूषण, सुनील लोहिया, अशोक कुमार शर्मा और बाल कलाकार तृप्ता। तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे, ध्वनि अंकन अमिता भट्टी और बटी लैंगलिंगडो तथा निर्माण ध्वनि संपादन तथा प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।
1: भूल चूक लेनी देनी, श्रोताओं अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: श्रोताओं, तो अब हमारी तकनीकी टीम यानी मीनाक्षी,
1: तनु,
0: जगबंधु,
1: सौम्या,
0: कुसुमलता,
1: विकास
0: और मयंक के साथ मुझे यानी अजीत
1: और मुझे यानी विमलेश को
0: आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा, चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गरीब।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। राम राम दोस्तों, आप सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ। वो गगन हमेशा जो गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं सिर्फ अपने सुनो शारदा 90.8 FM पर। ये है आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का मतलब यही कि यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हर रोज हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक, और हर रोज सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ। चलिए जनाब, आज कुछ खास है। जब मैंने समुदाय का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बातें होंगी, हमारी बातें होंगी। शारदा विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो यहाँ पर स्टूडेंट की भी बातें होंगी। समुदाय यानी कि समुदाय जोड़ने का काम करता है। समुदाय जहाँ एक छत के नीचे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग कल्चर है, उस कल्चर के बीच में जब हम जाते हैं, हमारे टीचर जाते हैं, प्रोफेसर जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलता है। जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम को हमने एक नाम दिया है और जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत नाम दिया है, राबता। राबता यानी कि एक जुड़ने का जरिया, कम्युनिटी कनेक्ट के जरिए समुदाय को जोड़ने का ये सफर है। तो जाहिर सी बात है कि इस सफर में कुछ हम सफर भी होंगे। जी हाँ, कुछ हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बड़ी ही शख्सियत, बहुत खूबसूरत शख्सियत आज हमारे बीच में है। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, उनका परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। मेरे बीच में है एडवाइजर हैं आप कम्युनिटी कनेक्ट शारदा विश्वविद्यालय से, साथ ही साथ शिबानी फाउंडेशन के आप फाउंडर हैं, आप हैं डॉक्टर बर्नाली खरा मैम। तो मैम सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू गगन जी, थैंक यू एवरीवन जिसको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है 90.8 FM से। और मैं इस कम्युनिटी कनेक्ट के जरिए मैं कुछ बात अपना शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे अपने स्टूडेंट को, अपने और कम्युनिटी को, जो जहाँ से सुन रहा है मेरी आवाज़, उन तक मेरी आवाज़ पहुँचना चाहिए ये समुदाय को हमें ऊपर जाने के लिए।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है दोस्तों। ये जो सफ़र है यूं ही चलेगा, कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें कह दी हैं कि इस सफ़र को हम आगे लेकर जाएंगे और हम आप ही की बातें करेंगे। और मेरे साथ मेरे जो दूसरे ख़ास मेहमान हैं, आप हैं कम्युनिटी कनेक्ट हेड डॉक्टर निमी अग्रवाल मैम। तो मैम आपका भी सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, ये एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए, हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। शारदा रेडियो जो कि वॉइस ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी है, जिसके माध्यम से आज हम बातचीत करेंगे कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में।
0: और तीसरी जो शख्सियत है उनका मैं नाम अभी नहीं लूंगा, मैं तब बुलाऊंगा उनको जब हमारी उनसे खुद डायरेक्ट बात होगी। तो ये जो यू कहना कि पर्दे में रखा हुआ है उस खास मेहमान को आप जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, थोड़ा तो आपके दिमाग को जोर देना ही चाहिए। चलिए आपके बारे में हम बाद में बात करेंगे, वो अभी थोड़ा वेटिंग में चल रही है। लेकिन कम्युनिटी कनेक्ट का जब हमने जिक्र किया है तो जिक्र हो रहा है एक समुदाय का, जिक्र हो रहा है आपकी बातों का, जिक्र हो रहा है UGC क्या कहती है, विश्वविद्यालय क्या कहता है, किस क्राइटेरिया के तहत हम लोग मैदान में जाते हैं, स्टूडेंट्स भी मैदान में जब जाते हैं कि तो उनकी जो एनर्जी है वो क्या रहती है, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं। यही सारी बातें करने के लिए मेरे साथ मेरे एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कम्युनिटी कनेक्ट के बारे में आपने क्या अब तक देखा है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता सकें तो प्लीज़ इसके बारे में बताएं।
1: मैं कम्युनिटी कनेक्ट का एडवाइज़र भी हूँ और मेरा अपना फाउंडेशन भी है, शिवानी फाउंडेशन
0: जी।
1: तो मैं वहाँ पे ऐसे कम्युनिटी से मिलती हूँ जहाँ पे आपको और कुछ नज़ारा दिखेगा, वहाँ का लोगों का प्रॉब्लम, वहाँ लोग कैसे रहते हैं। मुझे लगता है मेरे साथ साथ सबको वहाँ तक पहुँचना चाहिए
0: जी।
1: और मेरा अपना एक स्कूल भी है वहाँ पे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन के लिए, तो वो स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं अभी, उनको फ्री में मैं सारा एडुकेशन देती हूँ वहाँ पे। और मुझे लगता है ये बच्चों भी उस दुनिया तक पहुँचना चाहिए जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं
0: जी। आप जो जिक्र कर रही हैं वहाँ ये जगह है कहाँ?
1: ये हमारे एरिया में है, ज्यादा दूर नहीं है, ये इस और से थोड़ी सी दूरी में,
0: ग्रेटर नोएडा,
1: ग्रेटर नोएडा के पास में कासना एरिया है।
0: हाँ जी,
1: इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर आते हैं बाहर से, जो माइग्रेंट लेबर है ज्यादा, तो उनका एक एक घर का एक एक कहानी है।
0: नहीं, मैं समझ सकता हूँ, ये सक्सेस स्टोरीज हम बोलते हैं, उसको नजदीकी से जब जानेंगे समझेंगे तो चीजों को समझ में आएगा। तो क्या क्या स्टोरीज वो रहती है, थोड़ा सा अगर हम संक्षेप में बताएं।
1: वो लोग ऐसे दुनिया में जीते हैं, उनके लिए खाना ही सब कुछ है, उससे आगे वो लोग सोच ही नहीं सकते जो हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और मुझे जो लगता है जो शिक्षा सही से नहीं मिलेगा तो इसको आगे नहीं ले जा सकते। ये समुदाय को आगे जाने के लिए मुझे लगता है मतलब शिक्षा बहुत जरूरी है।
0: बेशक मैम, और इसीलिए कहा जाता है

0: कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, विद्या आपको पात्रता लेकर आती है, विद्या आपको धन देती है, धन से धर्म आता है और धर्म से सुख आता है। तो हम सब यही कामना करते हैं कि सब पढ़ें, आगे बढ़ें। तो इसके बारे में मैम हम ज़रूर चर्चा भी करेंगे और अगर आप हमें अलाउ करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आपके शिवानी फाउंडेशन ज़रूर जाना चाहेंगे, लोगों से मिलना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ तभी जाकर हमारा
1: मेरे साथ साथ इस अंधेरे में एक एक दिया को भी जलाएंगे सब लोग, तो और आगे बढ़ जाएंगे, हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं।
0: ज्योत से ज्योत जलाते चलो, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। हमारे साथ जो हमारे दूसरी गेस्ट हैं, आप हैं डॉक्टर निमी अग्रवाल जो कि हेड है कम्युनिटी कनेक्ट की। मैम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: तो आप भी कुछ हमें बताएं कि जब आप मैदान में जाते हैं तो किस तरीके के लोगों से आप मिलते हैं, कम्युनिटी कनेक्ट का जो एक उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य रहता है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को आप इन्वॉल्व करती हैं।
2: बिल्कुल गगन, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो क्या चैलेंजेस या क्या बच्चे हमारे ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना यहाँ पर ये ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि कम्युनिटी कनेक्ट है क्या
0: जी,
2: और शारदा विश्वविद्यालय का क्या उसके तरफ रुख है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये जो एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक मिशन है।
0: क्या बात,
2: एक मिशन है जो शारदा यूनिवर्सिटी अपना चलाती है कम्युनिटी कनेक्ट के नाम से
0: जी।
2: राइट, तो बेसिकली क्या है कि जो इसका जो बेसिक फिलॉसफी है कम्युनिटी कनेक्ट की, वो ये है कि जो हम सीखते हैं ना वो सिर्फ हमारे काम आता है, सोसाइटी के नहीं, लेकिन हम कम्युनिटी कनेक्ट के तहत बच्चों को सेंसिटाइज करते हैं, उनको अवेयर करते हैं अबाउट द कम्युनिटी। राइट, तो सेंसिटाइज और अवेयर करने से उससे उनको है ना सोसाइटी से कनेक्ट करते हैं, ताकि उनको सोसाइटी के जो और चैलेंजेस हैं वो भी उनको समझ में आए। तो यही सोच जो है शारदा कम्युनिटी कनेक्ट के हैं, ये एक ऐसा ब्रिज है जो नॉलेज को एक्शन में बदल देता है। राइट, केवल वो नॉलेज हमारे अपने पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। राइट, और इसमें यूजीसी भी यही कहता है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो टीचिंग रिसर्च करते ही हैं, लेकिन व्हाट दे आर सर्विंग बैक टू द सोसाइटी। तो उसी के तहत भी ये कम्युनिटी कनेक्ट हमारा पर्पस सॉल्व करता है, उसको सर्व करना, सोसाइटी को सर्व करना उसके बारे में बात होती है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या है, कम्युनिटी कनेक्ट का जो मतलब है वो ये है, यूनिवर्सिटी और समाज के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बनाना। राइट, क्योंकि जब किताबों की लाइंस ना जिंदगी की लाइन से मिलती है ना, तभी बनता है एक असली एजुकेशन। ये एक फंडामेंटल फिलॉसफी है कि हाँ, नॉलेज को ना, जो किताबों की नॉलेज है उसको हमें जिंदगी से जब तक नहीं जोड़ेंगे ना, तो असली एजुकेशन जो है ना वो किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्लासरूम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उन्हें हमें पंख देने हैं, उन्हें हमें समाज से जोड़ना है। और आजकल अगर आपको पता ही है जैन जी के हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो बहुत जरूरी है कि उन्हें हमें समुदाय से कनेक्ट करें।
0: देखिए, जो आपने कहा कि जैन जी का जिक्र किया, मैं समझता हूँ आप समझ रहे हैं, एक नया वर्ड है किसी के लिए, तो थोड़ा अगर आप इसको विस्तार दे सकें तो आप मुझे बताइए।
2: जैन जी मतलब बेसिकली क्या है, जो जेनरेशंस हैं उनकी बॉर्न डेट और ईयर यूथ।
0: यस,
2: तो दोज हु हैव बॉर्न आफ्टर 2010 और 2014 उनको जैन जी कहा जाता है।
0: सही जवाब।
2: तो जो है उन बच्चों का सोचना और हम लोग सोचने में थोड़ा फर्क है।
0: इसको आम भाषा में हम सुनते हैं कि एक जनरेशन गैप आ गया,
2: जनरेशन गैप,
0: आपकी सोच पुरानी है, हम आज का यूथ है। तो मैम शुक्रिया आपने इस पर रोशनी डाली, क्योंकि कई लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी न हो। लेकिन मैं एक और बात आपसे थोड़ा सा जानना समझना चाहूंगा कि जब लोगों को आप एकत्रित करते हैं, जब हम भी मैदान में जाते हैं कम्युनिटी कनेक्ट के बीच प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि एक बार की एक मीटिंग में कोई क्राउड हमारे सामने नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं डर होता है, घबराहट होती है, उनको ये भी लगता है कि आप अपना काम कर रहे हैं हमारे लिए क्या। तो नो डाउट एक फ्यूचर प्लानिंग है। अब यहाँ जो प्लानिंग को लेकर चलते हैं, नो डाउट कि शिबानी फाउंडेशन आप अपना काम कर रहे हैं, शारदा विश्वविद्यालय भी अपना काम कर रहा होता है, सिर्फ एक मीटिंग में वो काम मुझे लगता है सफल नहीं हो पाता होगा जो हमारा उद्देश्य रहता है। तो जो आप मैदान में उतर रहे हैं तो ये जो चैलेंजेस की बात है इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप मुझे बताएं तो किस तरीके की क्राउड मिलता है, कैसे लोग मिलते हैं, क्या उनके सवाल होते हैं।
2: हाँ, चैलेंजेस तो बहुत हैं। चैलेंजेस वन वे नहीं है, टू वेज हैं। एक तो चैलेंजेस यही है हमारे सामने कि बच्चों को उस चीज को समझाना कि हम उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो परसेप्शन उनके दिमाग में, वो विजन उनके दिमाग में सेट करना। दूसरा, जहां हम कम्युनिटी में लेके जा रहे हैं उनकी वो आइस ब्रेकिंग करना कि जहां वो बोलें कि हाँ ये इश्यूज हैं। जनरली जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं और जो अपने काम कर रहे होते हैं वो इतना समय देना नहीं चाहते कि जहां वो बातचीत करें और अपनी प्रॉब्लम को जाते ही एकदम से ओपन अप करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि हमें उनसे एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मिलना पड़ता है, एक विश्वास उनके साथ कनेक्ट आना पड़ता है, विश्वास डेवलप करना पड़ता है ताकि वो अपनी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो हमको शेयर कर सकें।
0: मेरे साथ डॉक्टर बर्नाली खरा मैम हैं दोस्तों। तो मैम, मैं इस संबंध में आपके व्यूज़ भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप एक फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और मैं समझता हूँ फाउंडेशन फिर अपना काम करता है। लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं, आप एजुकेशन उनको दे रहे हैं, उनको यूँ कहें कि एक वर्कशॉप आयोजित कर दे रहे हैं, या कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि शारदा विश्वविद्यालय उन स्टूडेंट्स को लेकर आता है और यहाँ पर एक छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी हो रही होती हैं। तो इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे जो मैम ने अभी बातें रखी?
1: नहीं, या तो स्टूडेंट के लिए कम्युनिटी कनेक्ट मुझे जो लगता है सिर्फ चैप्टर में नहीं है, ये प्रैक्टिकल ग्राउंड में उनको जाना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस दुनिया के बाहर और लोग कैसे जीते हैं, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, उनका हेल्थ कंडीशन, उनका हर दिन का कैसे चलता है, वहाँ रोजगार है, कैसे वो मैनेज करते हैं, आप कितना हैप्पी रहते हैं वो लोग, ये सब चीज़ उनको शेयर होना चाहिए क्योंकि ये दुनिया से वो दुनिया फर्क है,
0: बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हमने देखा है कि वो झुग्गी झोपड़ी में ही रह रहे होते हैं। हाँ। शायद अगर जब बदरा आते हैं तो वो दुआ करते हो कि ये पानी ना बरसे। हाँ, अगर पानी बरस गया तो मेरी झोपड़ी का क्या होगा। तो ये बहुत चैलेंजेस है।
1: मैंने बोला पहले भी, उनके लिए बस फूड ही सब कुछ है, बस खाने पीना जीना, बस उससे आगे कुछ सोच ही नहीं सकते ऐसे ही। और उनके पास बहुत सारे जिम्मेदारी है, बीमार, हर घर का एक एक स्टोरी होती है वहाँ पे।
0: बेशक, बेशक।
1: आप जितना दिन जाएंगे, एक एक घर जाएंगे तो एक एक स्टोरी डेली निकाल के आएगा वहाँ पे।
0: बेशक मैम,
1: तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे जाने।
0: मैं ये कहूँगा कि मैं खुलकर आपको एक अपनी बात रख रहा हूँ कि आप हमें निमंत्रण दें, हम आपके साथ चलना चाहेंगे।
1: जरूर, जरूर,
0: ताकि हम इस तरह की स्टोरीज को कवर कर सकें और अपने रेडियो FM पे लेकर आ सकें, जो शिबानी फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग आपको ऐसे मिलते हैं। तो अगर आप कहें तो दोस्तों तो हम तीसरे मेहमान को बुला लें क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। अगर हमारी बातें खत्म हो गई तो वो नाराज भी हो सकती है और हो सकता है खफा भी हो जाए, लेकिन हम अपने मेहमान को खफा नहीं करेंगे क्योंकि बातों का सिलसिला बहुत ज्यादा है, बहुत अथाह भंडार है, खजाना ही खजाना है हमारे पास। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं और आपके साथ मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, आपके साथ ग्राउंड में मैं गया हूं। तो आप हैं मेरे साथ, आप डायरेक्टर हैं शारदा सोशल बिजनेस सेंटर की, डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार गगन, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आपने जैसा कहा कि जो रेडियो FM और हमने पहले भी कई शो करे हैं अपने एक्टिविटीज़ को लेकर, और यहाँ पे हर बार आना एक नया अनुभव रहता है। और सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को स्नेहपूर्ण नमस्कार करना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी गगन और उनकी टीम का, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान करा।
0: तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसा नहीं था कि मैं आपको बुलाता नहीं, और ऐसा नहीं है कि मेरे पास सवाल नहीं है आपके लिए, मेरे पास सवाल अभी बाकी है, कह सकते हैं दोस्तों कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि पठन पाठन की बातें हो रही हैं, ज़िंदगी को समझने की बातें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि विश्वविद्यालय की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, UGC अपना एक क्राइटेरिया बनाता है, और उसके तहत जैसे कि हमने कहा कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन भी बढ़ चढ़ कर काम कर रहा होता है, शारदा विश्वविद्यालय अपना काम कर रहा है, और यही एक वजह है कि जब स्वास्थ्य का मैम ने जिक्र किया तो शारदा अस्पताल भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उस चीज को भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो मकसद है इसके पीछे हमारी क्या सोच है, क्या विजन है। अभी मैम से मेरी बातें हो रही थी, चूंकि हमारे शारदा विश्वविद्यालय के जो चांसलर सर हैं वो क्या सोचते हैं उनके बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मकसद है वो विश्वविद्यालय का क्या मकसद है, हम कहाँ तक पहुँचें, कहाँ तक जाएँ, उनको आगे तक भी लेकर आएँ, चाहे वो एजुकेशन की बात हो उनको यहाँ करिकुलम एक्टिविटीज़ की हो, बात हो हेल्थ की, तो कुछ और आप हमें बताएं।
3: जहाँ आपने ये सूत्र छोड़ा है मैं वहाँ से इसको उठाती हूँ। जैसे आपने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय को अगर हम लेकर चले, और स्पेसिफिकली आज जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो एक मकसद है और स्पेसिफिकली शारदा विश्वविद्यालय का, ना सिर्फ अच्छे इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है बल्कि अच्छे नागरिक बनाना है। तो वो जो एक स्पिरिट और जो एक फीलिंग ऑफ एबल सिटीजनशिप जो हम बात करते हैं, तो ये जो मकसद है उसका जो सीट है ये उस चीज़ को लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है। और जैसे आप बात करें कि वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, UGC है और NAC है और अदर इस तरह की बॉडीज़ हैं, पर यहाँ पे दो चीज़ों का मैं आपके सामने जो है विवरण करना चाहूँगी कि दो चीज़ें जो बहुत महत्व रखती हैं आजकल के टाइम पे। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का मिशन
0: जी, वर्ष 2047 तक
3: जी, तो कुछ क्योंकि आप इसको एक गमले की तरह ले सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल हैं, तो उस तरह का एक ब्रांच आउट हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का जो मिशन है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जेंडर इनइक्वालिटीज ना हो, जो असमानताएं
0: हमारी
3: वो ना रहे, और सबको एक क्वालिटी एजुकेशन हम प्रदान कर पाए, राइट। और इनका जो जेनेसिस है, क्योंकि ये तार से तार जुड़ता जाता है, वो जाता है, मैं आपको लेके जाऊंगी 2016 1 जनवरी को, जहां पे UN ने 17 SDGs जिसको हम बोलते हैं 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करी थी। तो जो हमारा चाहे हम शारदा सोशल बिजनेस सेंटर की स्थापना की बात करें या हमारे कम्युनिटी कनेक्ट की बात करें, तो इन सबके जो तार है वो जुड़ते हैं हमारे भारतीय मिशन के साथ और हमारे वैश्विक मिशन के साथ, जहां पे हम इन दोनों चीजों की बातें करते हैं।
0: जी जी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको विस्तार से हमें बताया, हमारे लिसनर्स तक बात पहुंचाई आपने, और मुझे एक नई चीज़ सीखने को समझने को मिली कि आपने जो मूल्यों की बात की, संस्कारों की बात की, वो कहीं ना कहीं आज गुम होती हुई नज़र आ रही है, और हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम एक भी विद्यार्थी को वो संस्कारों के साथ आगे लेकर जा पाएँ तो निश्चित तौर पर उसका जो योगदान होगा वो हमारे देश में होगा। डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, नैतिक शिक्षा को जब आप देखते हैं तो कहाँ आप पाते हैं कि वो नैतिक शिक्षा जिंदा है या नहीं है, क्या हम उसको विश्वविद्यालय के माध्यम से आगे लेकर जा सकते हैं? हमारे यहाँ वर्कशॉप्स भी होती हैं, और जब आप ग्राउंड पर जाती हैं तो क्या आप महसूस करती हैं महिलाओं का वो दुख दर्द, क्योंकि बीइंग ए लेडी होने के नाते? दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाहूँगा, तो प्लीज़ आप बताएं नैतिक शिक्षा।
1: प्रधानमंत्री का जो मन की बात है
0: जी,
1: जो ये जो ब्रिज गैप क्लियर करना है, हमें गैप जो है उस सोसाइटी के साथ, इस सोसाइटी की, तो मुझे लगता है अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। इस सोसाइटी के साथ वो सोसाइटी जब तक कनेक्ट नहीं होगा, SDG के तहत हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, इसको कैसे कैसे एक एक गोल हम पूरा कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: और
0: महिलाओं के क्या चैलेंजेस?
1: अच्छा, महिलाओं का
0: उनसे मिलती हैं।
1: महिला अभी तक रूरल एरिया में मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता है, लोकल एरिया में मैं जब जाती हूँ उनके पास, अभी तक मैंने जो गांव विजिट किया हुआ देखा, किसी के पास अभी तक मोबाइल नहीं है।
0: जी जी,
1: ऐसे भी देखा है। मैं आगे एक स्टीचिंग सेंटर खोलना चाह रही हूँ, तो उस गांव में हमने देखा है उनके किसी के पास अभी मोबाइल नहीं है, बोला यह मोबाइल महिला के लिए नहीं है।
0: कहीं ना कहीं
1: अभी भी अंधेरा है ही वहाँ पे,
0: यानी कि पुरुष तो आगे बढ़ना चाहता है, महिलाओं को वो मोबाइल देते हुए भी डरते हैं।
1: हाँ, नहीं अभी तक वो देखा नहीं, वो सोच बदलना पड़ेगा। कोई पर जाके मैंने देखा है उनके पास ना आधार कार्ड मतलब एडिट ना हुआ है, शादी के बाद वो पुराना ही आधार कार्ड है उनके पास, बेसिक चीजें सब नहीं, बाहर जाने नहीं देते है, अपनी बहू को बाहर जाने का भी मना है, बहुत सारे चीज मुझे
0: चैलेंजेस लगता है जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं वो आ ही रहे हैं।
3: जैसा मैम ने कहा उसको आगे ले जाते हुए कई बार हमें लगता है कि जैसे आपने कहा गगन कि ये मानसिकता की बात है, राइट, तो एक ये एक मेंटल ब्लॉक भी है। दूसरा मैं कहूँगी यहाँ पे खुद औरतों को भी अपना एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी
0: क्या
3: है,
0: बात है? Nice.
3: तो हर बार हम दूसरे पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते,

0: मैंने उनसे फिर सवाल करा कि ये काम तो आप अपने पति से पूछ सकती हैं, एक दिन वो शायद घर पे रह ले। बोले मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो ये बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी महिला श्रोता है सुन रही है, कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी बात दूसरे तक रखें। हम एक परसेप्शन के साथ चलते हैं कि शायद दूसरा हमारी बात समझता है और वो इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा, जहाँ की बात होती है कि हमने अपनी बात उन तक रखी नहीं है।
1: जी जी, इस बात को अगर हम यूं समराइज करें तो ये बात निकल कर सामने आती है कि बात करेंगे तभी बात बनेगी। बड़े से बड़े मसलों का हल हो जाता है जब आप बात करते हैं, अदरवाइज आप घुट जाते हैं, आप परेशान हो जाती हैं। और जिस तरीके से मैम ने अपनी बात, मन की बात हमारे साथ साझा की, तो मुझे लगा कि इस एक बात यही समझ में आई कि हमें उनको जगाने की ज़रूरत है, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता पूरी होती है एक कम्युनिटी कनेक्ट के माध्यम से, और यही एक उद्देश्य है कि हम लोगों के बीच में जाएं, स्टूडेंट्स को साथ लेकर जाएं, ताकि हम उनको बता पाएं, समझा पाएं, ताकि वो जान पाएं कि काश मैं भी कुछ मदद कर सकूं, काश मैं भी यहाँ जुड़ सकूं। हो सकता है उसके पास टैलेंट हो, वो गिटार अच्छा बजाता हो, क्योंकि जब बच्चे पढ़ पढ़ कर बोर हो जाते हैं तो हो सकता है वो गिटार भी सीखना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ शारदा विश्वविद्यालय का एक कर्तव्य एनजीओ है मैम, वो भी बढ़ चढ़ कर काम कर ही रहा है। जब मैम, मेरे डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरीके का रहता है, स्टूडेंट्स कैसे हमारे साथ जुड़ते हैं, या उनको जगाना पड़ता है कि नहीं बेटा आप चलो हमारे साथ?
2: नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टेड है। मैं 2-3 बार उसको लेके गई ऐसे गांव में, तो स्टूडेंट काफ़ी इंटरेस्टेड है। मैं नहीं बोलूँगी स्टूडेंट जानना नहीं चाहते हैं, और आने के बाद भी उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जो मैंने कोई कोई स्टूडेंट को मैंने बोलते हुए देखा है, जो मैम ये दुनिया तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, मैं सोच रहा था जो मैं ही गरीब हूँ, लेकिन हमसे भी इतना गरीब लोग हैं, हम देख के मुझे अच्छा लगा ये सब चीज़ें।
1: और यही हमारा मकसद है कि उस चीज़ को, दुख दर्द को आप जाने समझें। और बड़ी खूबसूरत लाइन है कि मेरा गम कितना कम,
2: प्यार से समझाओ तो बच्चे भी समझ जाते हैं। ऐसे नहीं है, दुनिया बदलेगा जरूर।
1: क्या बात है, दुनिया बदलेगा जरूर, हम छोटे कदमों से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मंजिल को पा ही लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई बात आपकी तरफ से छूट रही है मैम, तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम कार्यक्रम को आगे लेकर चलें।
0: अभी जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे, तो उस उपलक्ष्य में, क्योंकि मैं भी एज ए वॉलंटियर, जैसे मैम ने कहा, शिवानी फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो हम जो अपने श्रोता जो हमारे सुन रहे हैं, एक तो हम उनसे चाहेंगे कि वो हमारे साथ जुड़ें। हमारी वेबसाइट जो है वो www.shivanifoundation.com है, और दूसरा हम ये चाहेंगे कि हम एक, जैसे आपने कहा कि एक अकेला नहीं जो है वो काफिला बनता और लोग साथ में जुड़ते जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि इसमें हमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हमें सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनका सहयोग अगर किसी तरह से हमें मिल पाए, क्योंकि जैसे अंडर प्रिविलेज बच्चों की बात हो रही है, या हमारे बच्चे जब कम्युनिटी में जाकर उन लोगों की दुविधा देखते हैं, तो उस तरह के काफ़ी समस्याएँ हैं जो शायद रिजॉल्व हो सकती हैं, लेकिन शायद उस तरह का जो एक पहल है वो नहीं ली गई। तो
1: बहुत बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कोई हमसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ेगा। 01204060205 ये हमारा नंबर है। ठहराव के साथ मैंने इसलिए बताया, कभी कभी मैं भी श्रोता होता हूँ, तो जब रेडियो प्रेजेंटर के नंबर मैं फड़फड़ सुनता हूँ तो मेरे वो सर से ऊपर चला जाता है। यानी कि 120-40-60-205 के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेल के माध्यम से मेल जोल बढ़ा सकते हैं, 90.8fm@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और शारदा विश्वविद्यालय के जो दरवाजे हैं वो आप लोगों के लिए खुले हुए, आप कभी भी आइए, यहाँ का आप दौरा कर सकते हैं। तो मैम, आखिर में मैं डॉक्टर निमी अग्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो हमें बता रही थी कि जो एक विजन है, जो एक सोच है हमारे चांसलर सर की, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से कम्युनिटी कनेक्ट के माध्यम से शारदा विश्वविद्यालय को वो आगे लेकर जा रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं, प्लीज़।
3: जो हमारे ऑनरेबल चांसलर सर हैं श्री पीके गुप्ता जी, उनका विजन है, उनका इसी बात पर ज़्यादातर जोर रहता है कि यूनिवर्सिटी का असली काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि सोसाइटी के बीच जाकर उसका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उनका मानना है कि हर स्टूडेंट एक चेंज मेकर हो सकता है, बस उसे एक मौके की और सही दिशा की ज़रूरत है। उसके अलावा उनका ये भी मानना है कि जैसे मैंने बताया जेन जी, राइट, तो जेन

0: जी के जो जो हैं, ये जनरेशन है, ये स्टूडेंट्स हैं आज, इनको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, हाउ डू दे सर्वाइव इन सच अ मीगर सैलरी, इतना कम पैसे में वो कैसे अपनी फैमिली को कैसे वो सर्वाइव कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमारा हर बच्चे को इस विषय में पता हो कि सर्वाइवल कितने कम में हो सकता है।
1: क्या बात है। इस बात को अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो उस विजन को हमारे वीसी सर मिशन बनाकर, हमारी टीम मिशन बनाकर आगे सही बात कह दी।
0: बिल्कुल सही।
1: हंसते रहिए, आप भी मुस्कुराते रहिए, मेरे भी चेहरे पर हंसी आ गई कि आपने मेरी बात का समर्थन कर दिया। तो दोस्तों, लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए, ना टेंशन लेने की जरूरत। लोग कहते हैं कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का, लेकिन मैं कहता हूं कि ना टेंशन लेने की जरूरत, ना टेंशन देने की आवश्यकता। क्योंकि अगर आप किसी को टेंशन देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं ताना बाना बुन रहा होगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, और जो मेरे साथ मेरे जो खास गेस्ट जुड़े रहे, मैं आप सबका बारी बारी दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। मेरे साथ जुड़ी रही, आप जुड़ी रही शिवानी फाउंडेशन की फाउंडर और एडवाइजर कम्युनिटी कनेक्ट शारदा विश्वविद्यालय से, डॉक्टर बर्नाली खरा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई मैम।
2: थैंक यू गगन जी, थैंक यू सुनो सरदा 90.8 FM जो सुन रहा है, सबको मेरा धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम, और सब जुड़ जाइए शिवानी फाउंडेशन से एंड कम्युनिटी कनेक्ट से।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। साथ ही साथ डॉक्टर पारुल सक्सेना मैम, आपका भी धन्यवाद। डॉक्टर निमी अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाह रही मैम, इशारा कर रही अगर मुझे कुछ कह रहा है, प्लीज मैम।
3: जी, मैं सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगी कि जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है, लेकिन सोहन लाल त्रिवेदी जी की दो लाइनें मुझे याद आ रही है
1: जी,
3: कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो जिस चीज को, इस जज्बे को लेते हुए हम जीवन की कोई भी कठिनाई हमारे जीवन में आए उसको हम पार कर सकते हैं, और जीवन को जैसे करने का एंजॉय करिए, कीप हेल्दी एंड कीप सेफ। थैंक यू।
1: थैंक यू मैम। डॉक्टर निमी अग्रवाल मैम, आप भी कुछ कह दी।
0: गगन जी, द वॉइस ऑफ शारदा यूनिवर्सिटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का, और दिल से धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और जरूर दोबारा जल्दी हम मिलेंगे। धन्यवाद।
1: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जा...

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा।
0: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
2: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़प जा मच्छर बन पर भारी।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: रेडियो पर कॉम।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
3: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी का पूरा और पक्का इलाज है, लेकिन इलाज में रुकावट करने से टीबी की दवा मरीज पर असर करना बंद कर देती है, इसलिए ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की जांच करना आवश्यक है। DRTB की जांच आधुनिक मशीन CBNAT के द्वारा सरकारी और नोटिफाइड प्राइवेट टीबी मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध है। इस जाँच की रिपोर्ट केवल 2 घंटे में दी जाती है, जिससे DRTB और उसके सही उपचार का जल्द पता चल जाता है। मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
4: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
5: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
6: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नवी नवी आई बीबा चंडीगढ़ शहर, रख सांभ के तू रूप तेरा कत्ते दी दुपहर। नवी नवी आई बीबा चंडी

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: तुम्हारी सरकारी नौकरी पक्की हो गई है।
2: अरे मम्मी, सरकारी नौकरी लग गई।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो श्रोता 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

मेहरबा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो सिंगर म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय आदित्य रेखाड़ी म्यूजिक लावेटर मेहरबा ओनली ऑन सुरु शारदा 90.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग, यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा, यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान, यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन।

0: Communication specially designed for film, television, OTT production, animation, VFX, gaming design, public relation and advertising.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है, तो फिर कहीं देर ना हो जाए। कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
6: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
5: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
6: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
5: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
6: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
5: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
6: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
5: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
7: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
8: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
7: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: जल्दी आओ अब्बा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: पिछली बार।
1: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
0: तो जीती, मैं हारी। तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
1: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
2: टीम तारा है।

0: मरना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
4: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
7: सुनो शारदा।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे। हेलो कौन? अरे हम बोल रहे। हम बोल रहे। हम बोल रहे। हम बोल रहे। हम बोल रहे।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जाने। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हमारा भविष्य हाथों में है,
2: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
1: हाथ होंगे साफ सुमन के पालन के साथ, एस मतलब सीधा, बहते हुए साफ पानी से हाथों को गीला करें और साबुन लगाएं, पानी से दूर अपनी हथेलियों को रखें,
2: यू मतलब उल्टा, हाथ के बाहर वाले हिस्से पर अच्छे से साबुन लगाएं,
1: एम मतलब मुट्ठी, अपनी उंगलियों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें,
2: ए मतलब अंगूठा, अंगूठों और उनके बीच की त्वचा को रगड़ें,
1: एन मतलब नाखून, अपनी हथेली और नाखूनों को रगड़ें,
2: के मतलब कलाई, हाथ के पीछे के हिस्से को रगड़ें,
1: और अंत में बहते हुए साफ पानी से हाथों को धोएं और हवा में हाथों को सुखाएं।
2: तो सुमन के पालन के साथ हाथ हो गए पूरे साफ।
1: एस मतलब सीधा,
2: यू मतलब उल्टा,
1: एम मतलब मुट्ठी,
2: ए मतलब अंगूठा,
1: एन मतलब नाखून,
2: के मतलब
1: कलाई।
2: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से
1: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
3: जनहित में जारी।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में